ओम शं शनैश्चराय नमः। कलयुग में न्याय के देवता शनि देव भगवान जो सबको कर्म फल देते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शनि की बुरी दशा से बचना हो तो हमेशा अच्छे कर्म करो। एक बार रावण भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को बोले। इस पर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण को कहा कि ये तो मेरे वश की बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ शनि देव ही कर सकते हैं। शनि देव शत्रु नहीं है, शनि देव मित्र हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो।

रावण ने सोचा कि मैं अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को अमर न कर सका तो क्या हुआ, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने होने वाले पुत्र को अवश्य ही अमर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा सोच विचार कर रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों पर चढ़ाई करके सबको पराजित करके सबको बंदी बना लिया, सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था।

महान तपस्वी रावण जो अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर चुका था, उसने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह और नक्षत्रों को ज्योतिष के हिसाब से अमरत्व के निश्चित स्थान पर बैठाकर अमर योग बना दिया, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो, उसके होने वाले पुत्र को कभी कोई मार न सके।

अमर योग बनने से सभी देवता चिंतित हो गए और न्याय के देवता शनिदेव से मदद की गुहार करने लगे। तब शनिदेव सभी देवताओं की करण पुकार सुनकर न्याय करने की बात सोचने लगे और जन्म का शुभ मुहूर्त आने के सही वक्त पर उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया, जिससे अमर योग समाप्त हो गया। और अमर योग के समाप्त होने पर रावण ने क्रोध में आकर शनि देव के पैर पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक पैर सदा के लिए लंगड़ा हो गया।

प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शनि देव सच में न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं समस्या में चले जाते हैं, मगर अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए तो कहते हैं, सुखी रहना है

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
8: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
7: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
9: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
7: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
12: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashvani News.
11: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 18,800 crore rupees 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
13: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2-day visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok, and INS Agrai, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly Rs. 590 crore, a new 300-bed railway hospitals in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives.
14: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
15: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
16: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
15: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
17: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
18: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
19: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
20: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त आरजे आनंद, आपके परिवार का फैमिली का हिस्सा जो बन गया हूँ डेली आपके परिवार में। आपके रेडियो सेट के माध्यम से आपके बीच आ जाता हूँ ढेर सारी जानकारियां लेकर, ढेर सारी वो बातें लेकर जो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको बताने, समय समय पर याद दिलाने की क्या चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं आप सभी का इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। दोस्तों स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:24 और आज तारीख की बात करें तो 20 जून की सुबह है। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है सैटरडे का। ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ जाते हैं एवरी मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं आपका, आप इतना प्यार हमारे साथ साझा करते हैं अपना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना कभी कभी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ना बड़ी अच्छाइयों को निभाने लगते हैं और उन अच्छाइयों के चक्कर में हमारे साथ कभी कभी ना हमें बदले में वो मिलने लगता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना बेवकूफी है मेरे दोस्त, क्योंकि 2026 चल रहा है, आजकल के लोगों को ना अच्छी चीजें कम भाती हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं ना, तो इसीलिए आपको अभी क्या करना है ना, जैसा देश वैसा पेश, वो बात आपने सुनी है ना, मतलब आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपने किसी को रिप्लाई भी करना है तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में ही कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज़ों को फॉलो करें या गलत हैबिट को डालें या नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो, नहीं नहीं, आपको किसी भी चीज़ का जवाब जब आपको लगे कि अति हो रही है तो आपको रिप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, है ना। तो अच्छी चीज़ों के साथ आप जब सामने वाले को रिप्लाई करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ तो उसमें भी चेंज होगा, है ना। तो बस पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। लोगों का क्या है यार, लोग तो कुछ करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, है ना। तो लोगों के बारे में नहीं, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी स्टेशन क्लॉक में 8:25 हो रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही औसम है एंड मौसम के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी है आज के दिन के बारे में, डेफिनेटली बहुत कुछ है जो आपके साथ साझा करना है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह की, जिससे हम करेंगे एक बेहतरीन शुरुआत।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: चलिए श्रोताओं छोटा सा ब्रेक, इसके बाद आपका स्वागत है और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक म्यूजिकल गीत की ओर। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक इसके साथ कर रहे हैं आज की अपनी सफर की शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन गाना है। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: वेलकम बैक है जी। बिल्कुल नाचते रहिए, नाचना जरूरी है। सुबह सुबह डांस करना भी एक्सरसाइज में ही शामिल होता है। हाँ जी, 8:33 हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका मॉर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग एंड लोकल फॉर वोकल डेडिकेट होता है ये प्रोग्राम। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे व्हाट्सएप आपके आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें आप करते रहिए, हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो रहा है आपकी बातें सुन के। फिलहाल अभी मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे शहर में, और वहाँ की कौन सी चीज़ बहुत फेमस है जिसको आप जब सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, आपको भी ना बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ दे रहे हैं, जो आजकल हमारी एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विज, वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना। इसके अंतर्गत हमारे अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध जो वहाँ के वैरायटी वाले फूड हैं, जो बहुत पॉपुलर फूड हैं, वो कैसे अब नेशनली ही इंटरनेशनली भी पहुँच रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी उनको दिलाई जाएगी। और वो कौन कौन से फूड हैं जो हर शहर की एक अपनी एक शान है, एक आन बान शान पहचान है, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं वाराणसी की गलियों में। वहां पर क्या फेमस है, अगर आप कभी बनारस जाएं तो ये वहां की चीज आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं सीधा बनारस की गलियों में।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की मह तक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सके।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ ये नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। शो है बिंदास मॉर्निंग। अभी एक और बिंदास गाना, इसके बाद लौट कर आ रहे हैं लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज। गुड मॉर्निंग।

एक बेहतरीन गाना वी जरा सा भी आपने एंजॉय किया। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और बिल्कुल आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी का असली मजा है। हमें किसी और के कहने से किसी और को दिखाने के लिए कभी नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और वो जरूर करें छोटे छोटे काम जिनको करके हमें और आपको खुशी मिल सकती है। अच्छा अगर मैं आज आपसे पूछूं लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको करके इंसान को छोटी छोटी खुशियां मिल सकती है, क्या लगता है आपको? आप कौन कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें करके इंसान को खुशियां मिल सकती है? क्या सच में हमें बड़े बड़े काम करके ही खुशियां मिल सकती है या हमें छोटी छोटी चीजें करके भी खुशियां मिल सकती है? हम अपने पेड़ पौधों को पानी देकर भी खुश हो सकते हैं, अपनी बालकनी में एक छोटा सा मिट्टी का पात्र पानी से भरकर रखें, जब वो पक्षी आकर पिए वो देखकर भी मन खुश हो सकता है, किसी की मदद करके मन खुश हो सकता है, किसी को एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देके मन खुश हो सकता है। यार देखो खुशी के बहाने ढूंढने के लिए तो ढेर सारे हैं, और अगर आपको खुशी नहीं होना है तो भैया आप कितनी भी बड़े बड़े ये लो वो लो कर लो पर जी तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो भैया आपको क्या लगता है इंसान को खुश रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए? आप मुझे व्हाट्सएप करके डेफिनेटली बता सकते हैं 9837896896 पर मैसेज करिएगा। इंतजार रहेगा कि इंसान को खुश रहने के लिए कौन कौन सी चीजें डेफिनेटली करनी चाहिए, वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें करके हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। बड़ी बड़ी चीजें नहीं बतानी है, छोटी छोटी चीजें बतानी है भाई। तो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके आपको खुशी मिलती है और आप चाहते हैं कि अगर ये सब लोग करेंगे तो शायद उनको भी खुशी मिलेगी, आई एम श्योर। दोस्तों आज 20 जून की सुबह है और चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो आपको बता दें विश्वनाथ आनंद जी जो है उनसे रिलेटेड आज का ये दिन बहुत ही खास है। भैया क्यों खास है ये दिन उनके लिए डेफिनेटली भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आज का ये दिन 1998 का ये दिन बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने के नाम आज का दिन हो जाता है। वहीं अगर आपको बात करें तो कहिरा में समूह 15 देशों में 10वां शिखर सम्मेलन जो था वो समापन हुआ था सन 2000 में, श्रोताओं आज ही के दिन। एंड आपको बताते चलें आज का दिन और भी तमाम सारी चीज़ों को लेके विशेष है। आज के दिन की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हर दिन के इतिहास से थोड़ा सा डिफरेंट बना देती हैं आज के दिन को। आपको बता दें जापान ने अपनी सेनाओं को इराक से वापस बुलाने का निर्णय लिया था सन 2006 में आज ही के दिन। और रूस महलवायक यानी कि M-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था सन 2005 में आज ही के दिन, श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज ही के दिन जो है बहुत सारे लोगों का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो प्रसिद्ध भारतीय हिंदी साहित्यकार हैं, 1940 में इनका जन्म हुआ। वहीं गौर किशोर घोष जो कुशल पत्रकार तथा लेखक रहे, 1923 में इनका जन्म हुआ। वहीं भुवनेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध जो है काफ़ी पॉपुलर नाम, जाना माना नाम रहा है, उनका जन्म हुआ आज ही के दिन सन 1910 में। वहीं लक्ष्मण काशीनाथ जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, श्रोताओं। एंड हमारी जो अगर हम बात करें आज के दिन की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज के दिन को और भी स्पेशल बना देती हैं, श्रोताओं। और आज का दिन और भी तमाम सारी चीज़ों को लेके विशेष है। आज के दिन की और क्या विशेषताएं हैं धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे आप तक वो तमाम ढेरों जानकारियाँ जो आपकी सुबह को थोड़ा यूनिक और अल्टीमेट बनाएंगी। फिलहाल आपके संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, चलिए एक नज़र डालेंगे आपके मैसेजेस की ओर, आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे संदेश आपने किए हैं उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। एक और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पर शिखा जी। गुड मॉर्निंग शिखा अग्रवाल जी, लिखती हैं आनंद जी सुप्रभात,

रणवीर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं मुरादाबाद से, लिखते हैं नींद पूरी हो गई हो तो आप उठ जाओ, सुबह हो गई है गर्मा गर्म चाय पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे वाह। साथ में लिखते हैं मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी, जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनकी दरवाजों पर खुशियां खुद चल कर आती हैं। आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। बात तो गजब की लिखी है आपने। जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, क्या हाल चाल है? इंसान को जिंदगी में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद की तारीफ करनी चाहिए, अगर वो खुद को कॉम्प्लीमेंट देगा तो उसे किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। वाह वाह कमाल कर दिया जुल्फी जी। रिहाना जुड़ चुकी है रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। वहीं मेरे साथ दुर्गेश सैनी जुड़े हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, इनको हमारा शो जबरदस्त लग रहा है। चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गीता कश्यप, एंड ये लिखती हैं आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए इस गाने को सुनेंगे, जरा सी देर में लौट कर आएंगे तो आपसे कुछ और खास विशेष बातें करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नजर डालेंगे। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:12।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: वेलकम बैक जी, तीसरी घंटे की हो गई है शुरुआत। एग्जैक्टली 9:00 मिनट हो रहे भाजी, 5 मिनट हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह आनंद के साथ हैं। आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं भाई साहब कुछ कड़क बातें जो हमारे आसपास में चलती रहती हैं वो सब आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें भैया, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया मौसम विभाग ने। देश भर में बदलेगा मौसम। हाँ जी, आपको बता दें 20 जून से लेकर 24 जून के बीच बारिश होने के आसार हैं, जिससे लोगों को इस गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। और बताया जा रहा है भारत के कई राज्यों में अलग अलग सप्ताह में भारी बारिश होने का जो है ये एक मतलब प्रोटेक्शन जताई जा रही है, एक संभावना जताई गई है कि भैया बारिश हो सकती है। और कुछ क्षेत्रों में 60 से 70 किलो प्रति मीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। और तेज हवाओं का जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग के हिसाब से। आपको बता दें मौसम विभाग अनुसार के मुताबिक दिल्ली NCR में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो भैया देखिए, अभी जो प्रेडिक्शन आई है वो 20 जून से लेकर 24 जून के बीच कभी भी मौसम बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिलहाल ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने आपको बताया था कि व्हाट्सएप ने जो है भारत में अपना एक नया व्हाट्सएप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 79 रुपीज प्रति माह रखी गई है, जिसके तहत यूजर्स को कई नए प्रीमियम फीचर्स और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। कंपनी का कहना है कि ये सेवाएं उन यूजर्स के लिए लाई गई हैं जो व्हाट्सएप को बेहतर और अधिक तरीके से और ज्यादा यू नो ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए जो इच्छुक यूजर्स हैं वो ऐप के जरिए जो है सब्सक्रिप्शन आसानी से लेकर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे और अभी आपके जो मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी कुछ कड़क अपडेट हैं जो मुझे आज इस घंटे आप तक पहुंचानी है और अभी क्या कुछ खास चल रहा है उस पर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कल 21 जून को योगा दिवस है, जिसको लेकर मुरादाबाद शहर के अंदर ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं, ढेर सारे रंगारंग कार्यक्रम कल होने वाले हैं अपने मुरादाबाद में। कहां पर क्या होने वाला है डेफिनेटली आपको बताऊंगा लोकल फॉर वोकल के बारे में, अभी बात करेंगे लौट कर आएंगे। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं अभी एक खूबसूरत ट्रैक की। जी हाँ, मतलब एक गाने का वक्त हो गया है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जल्दी से लौट कर आता हूं। तो उसके बाद बात करूंगा लोकल फॉर वोकल के मुरादाबाद में इंटरनेशनल योगा डे को लेकर क्या तैयारी चल रही है। वर्ल्ड म्यूजिक डे पे एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल शो होने वाला है आप ही के मुरादाबाद में। कल वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। एग्जैक्टली, अब म्यूजिक से तो हम सबको बहुत प्यार है यार, है ना, बिलोंग जो करते हैं इस इंडस्ट्री से। एनीवेज, इस पे अभी बात करेंगे जब लौट कर आएंगे। बैक टू पॉइंट, अभी मैं जाता हूं पॉइंट पे। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें इंसान करके लाइफ में खुशी सेलिब्रेट कर सकता है। क्या लगता है आप खुशी पाने के लिए, खुशी को फील करने के लिए आपको कैसे खुशी मिलती है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें जिनको करके आप बड़ा खुश और हैप्पी महसूस करते हैं। व्हाट्सएप करो आप मुझे 9837896896 पर व्हाट्सएप करके बताओ मुझे। आपको क्या लगता है, आप कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें करते हैं जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है? व्हाट्सएप करके मुझे बताओ फटाफट से, हम इंतजार है आपके मैसेजेस का। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको कहां मिलने वाला हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल के लिए निकाल दिया एक बेहतरीन ट्रैक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।

जी की हाल चाल है। सैटरडे की है, शनिवार की सुबह है यार, तो थोड़े अच्छे वाले गाने भी होने चाहिए। दिलीप मेहंदी, सुनीति चौहान, इसमें चाय चाय की बातें हो रही है, डांस शांस की बातें हो रही है। क्या बात है, मिलकर डांस करेंगे यार। लौट के रहा था इस गाने के बाद।

ला ला हाय हाय।

क्या गाना है यार, बेहतरीन वाला गाना सुन के सच में मजा आ गया यार, मेरे को तो बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे गाने सुनने को मिल जाए वीकेंड पे तो और क्या ही चाहिए यार। वेरी वेरी नाइस ट्रैक, और ऐसे ही गानों के लिए बस आपको ट्यून ही रहना होता है आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करने के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो यार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिल से आभार और प्यार व्यक्त करते हैं यार आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ, कल है इंटरनेशनल योगा डे और कल वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। कल वर्ल्ड म्यूजिक डे का एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है अपने पंचायत भवन में, एंड इसमें हम लोग भी ऑफ कोर्स एज अ मीडिया पार्टनर वहां जाने वाले हैं, तो आप लोग डेफिनेटली यू नो इसके बारे में मोर डिटेल्स के लिए आप जो है इनके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। और ये जो विक्की पार्कर हैं, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, वो लोग ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। म्यूजिकल लोग अगर म्यूजिकल इवेंट पे, म्यूजिकल डे पे म्यूजिक का कोई कॉन्सर्ट ना करें तो कुछ तो अधूरा अधूरा सा रहेगा ना। सो कल वर्ल्ड म्यूजिक डे है, ऑफकोर्स आप हमारे साथ तो म्यूजिक एवरी टाइम एवरी डे सुनते हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिक आपके लिए हम लोग प्ले करते हैं, और म्यूजिक से कहीं ना कहीं हर इंसान का एक अलग ही कनेक्शन है, चाहे वो ओल्ड म्यूजिक हो, न्यू म्यूजिक हो, इस जनरेशन का म्यूजिक हो, जेन जी जनरेशन का म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक, व्हाटएवर, म्यूजिक अपने आप में एक बहुत अच्छी थेरेपी है यार, है ना। अब तो हर जगह पे ये चीज आ गई है कि भैया म्यूजिक भी एक अच्छी थेरेपी का काम करता है, तो जब आप सही म्यूजिक सुनते हैं ना तो ये आपको स्ट्रेस से बाहर भी निकाल देता है, और अगर आप ऐसे वाला म्यूजिक सुन लो कि आप ऑलरेडी सदमे में हो तो फिर आपका स्ट्रेस और बढ़ भी जाता है कई बारी। फिलहाल कल वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो उसकी आपको एडवांस में ढेरों बताएं, बिकॉज कल मेरी आपकी मुलाकात तो होगी नहीं, दिस इज संडे ना। एंड इसके अलावा कल इंटरनेशनल योगा डे है, 21st को कल योगा डे है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, मुरादाबाद में बड़े जोरों शोरों से चल रही है, कंपनी बाग में भी बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग आने वाले हैं कल, एंड अगर आप भी वहां आ रहे हैं तो हम भी आपको कल डेफिनेटली मिलेंगे कंपनी बाग में। योगा डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है हर साल वहां पर, और इस बार भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होने वाला है, तो हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, प्लीज यू हैव टू कम, डेफिनेटली आप आए, ज्वाइन कीजिए, आपको मजा आएगा। और अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं जाना हो पा रहा है, तो आप अपने रामलीला ग्राउंड में आओ, यहाँ पर भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, कल योगा डे को लेकर बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अपने रामलीला ग्राउंड में भी बहुत अच्छा यू नो योगा स्पेशल प्रोग्राम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं योगा के बारे में, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप चाहे रामलीला ग्राउंड जाएं या आप कंपनी बाग जाएं, आपके आसपास के किसी भी पार्क में आप जरूर जाएं, बट योगा डेफिनेटली करें, और सिर्फ एक दिन के लिए योग नहीं करना है, सिर्फ सेल्फी फोटोज के लिए योगा नहीं करना है, आपको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, एक्चुअली अपनी हेल्थ के लिए आपको योगा करना है ना। करें योग, रहें निरोग, है ना। तो योग अपनाइए, स्वस्थ शरीर पाइए, स्वस्थ जीवन पाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं हैं जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन सही डायरेक्शन में कीजिए, है ना। कोई भी चीज को गूगल इंटरनेट से उठा के बिल्कुल मत ट्राई कीजिए, जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक आप उसको उसका जो असली बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कल योगा डे के मौके पर आप कहां जा रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके। ढेर सारे लिसनर जुड़े हैं मेरे साथ, जुड़ चुकी हैं यहाँ पर प्रतिनिधि, अरे वाह प्रतिनिधि जी आपका नाम बहुत प्यारा है, लिखती है हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, फर्स्ट टाइम मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अरे मैम थैंक यू सो मच, आपने तो मतलब मेरा दिन ही शानदार कर दिया, अब मैं और क्या ही बोलूँ, मजा ही आ गया मुझे। एंड साथ में लिखती है आनंद जी, सुबह सुबह जब आप अच्छे गाने बजा रहे हैं तो सुबह अच्छी हो जा रही है, लेकिन रेडियो पे एक बात तो है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ म्यूजिक भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो हम अच्छा म्यूजिक निकाल कर लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपकी सुबह फैबुलस हो जाए। Move your body now, भैया थोड़ा डांस वांस करो आप उनके साथ, आप भी सारे नार कर ले पार्टी, पूरी तू लगती है नॉटी। ये गाने के बोले हैं, अच्छा गाना है यार ये। 9:20 हो गए स्टेशन क्लॉक में, लौट कर आते हैं, कुछ और स्पेशल बातें आपको बताने वाले।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

श्रेया घोषाल की इतनी ब्यूटीफुल आवाज, साथ में भाई साहब ने इतना प्यारा साथ दिया है, तो गाना ऑफ कोर्स अल्टीमेट हो ही गया है। वेलकम बैक यू वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सैटरडे मॉर्निंग 9:28। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे आ गई है वड्डी वाली स्माइल, क्या आवाज है सर। यार आप कहीं भी जाओ, आप दिल्ली रोड जाओ, कांट रोड जाओ, आप स्टेशन रोड जाओ, आप जहां भी जा रहे हो बस ऐसे मुस्कुराते हुए जाओ यार। बहुत जरूरी है मुस्कुराना जिंदगी में। मुस्कुराहट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, उसकी जो एक पॉजिटिविटी होती है उसकी बात ही अलग होती है यार। आपको बताते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड जल्दी बदल सकता है। सऊदी अरब में अब बनने जा रहा है एक अलग लेवल का टावर, जो 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। यस, 167 मंजिल वाला ये मेगा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा बताया जा रहा है कि लग्जरी होटल एंड एक आधुनिक समेटे हुए सुविधाओं के साथ ये आने वाला है। एंड ये जो बनने वाला है ना भाई, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड जल्द ही बदल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। एंड आई डोंट नो भाई ये क्या होने वाला है, अच्छी बात है। लेकिन बुर्ज खलीफा को लेके जो इंसानों के अंदर एक बना हुआ ना कि हाँ यार बुर्ज खलीफा तो है ही बड़ी कमाल की चीज़, पर ऑफकोर्स कमाल की चीज़ है यार, नो डाउट। फिलहाल बुर्ज खलीफा की बात नहीं करेंगे, अभी हम काम की बात करेंगे। आपको बता दें, ब्रिटेन में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन। एग्जैक्टली, आपको बता दें ब्रिटेन ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। वहां के जो पीएम साहब है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की उनको इजाजत नहीं होगी, उनको अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि

के साथ बहुत ही अच्छी मूवी है ये। कॉकटेल 2 की बात करूं मैं, कल रिलीज हो गई कॉकटेल, एंड इसके बारे में क्या फैंस बातें कर रहे हैं भाई। मतलब बताया जा रहा है कि मूवी ने कमाल कर दिया यार, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और कड़क अपडेट आपको देंगे। लेकिन आपके जो संदेश आ रहे हैं पहले उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाऊंगी, जिसे सुन के ना आप भी बहुत चक्के रह जाओगे यार। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:31। आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, मैंने कहा था इंसान को खुश रहने के लिए लाइफ में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। क्या लगता है, क्या इंसान को खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए, या वो छोटी छोटी चीजें करके भी खुश रह सकता है, यही मैं आपसे पूछ रहा था आज। बात नहीं करें भाजी, पहले मैसेज पढ़े। अरे एक मिनट रुको ना यार, देखिए हमारे साथ कौन जुड़ी है। गुड मॉर्निंग आनंद सर, आप कैसे हैं? और आपने पूछा था कि वो कौन सा काम है जिसे करके खुशी मिलती है, तो मैं ये लिखती हूँ, मैं मतलब बताना चाहती हूँ, एंड ये लिखती है कि सर मैं चिड़ियों के लिए छत पर पानी रखती हूँ, और जब चिड़िया पानी पीती हैं तो उन्हें देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही खुशी होती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें करके मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। थैंक यू शबीना जी, रहमत नगर से आपने मैसेज किया। शबीना खान जी, बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं। मुरादाबाद से रणवीर जी लिखते हैं, इंसान को अपना सुख और दूसरों का दुख जो है हमेशा, मतलब इन्होंने लिखा है कि अपना सुख और दूसरों का दुख हमेशा छोटा दिखाई देता है। इसमें खुशी वाली कोई लॉजिक नहीं थी, आप मुझे ये बताओ इंसान कैसे खुद को खुश रख सकता है छोटी छोटी चीजें करके। गुड मॉर्निंग, हेलो आनंद जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? ललिता कश्यप जुड़ चुकी है मेरे साथ नवीन नगर से, रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। विक्की सागर, रेखा शर्मा जुड़ी है मेरे साथ लाइन पार से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। एंड गुड मॉर्निंग के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी, ये लिखते हैं, हेलो जी, आज जो आपने बनारस शहर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत अच्छी लगी हमें, थैंक यू सर। दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड साथ में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीबी राधिका, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, हमारी तरफ से गीता दीदी को शादी की वेडिंग एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। क्या बात है, हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, मुरादाबाद गागन से यास्मीन, हेलो सर, क्या लगता है ना, मुझे लगता है कि लोगों को छोटे छोटे काम में हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, उससे भी बहुत खुशी मिलती है हमें, एब्सोल्युटली। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी? मोहसिन अंसारी बनारस से जुड़े हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहले तो आप जो है, मतलब ये लिखते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को खुश, हमें खुश रखना चाहिए, इंसान को जो है कोई भी दिक्कत हो उसकी परेशानी डेफिनेटली दूर होगी अगर वो खुद को खुश रख पाएगा तो। एंड कहीं ना कहीं ये लिखते हैं कि हम जो है लोगों को भी खुश तभी रख पाएंगे जब हम खुश होंगे, बिल्कुल सही कहा है आपने मौसी जी, थैंक यू सो मच। लिखते हैं आप आते हैं तो धमाल मचा देते हैं सुबह सुबह, अरे अरे सर ये तो आपका प्यार है यार, आपका बड़प्पन है बॉस। बिल्कुल बहुत अच्छे का मौसी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
6: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
7: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: क्या बात है यार, बिल्कुल जी, मैं तेरा तू मेरा होने लगा। और पाजी अभी एक खास बात जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लौट कर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत प्यारा गाना चला रहा हूँ।
1: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

कसम से यार, इस गाने को सुन के तो बड़ा मजा आ गया है। प्रीतम साहब का म्यूजिक था, इतना अच्छा गाया जावेद साहब ने, बहुत ही बेहतरीन गाना सुन के सच में सुबह अच्छी हो गई होगी आपकी भी, मेरी तो अच्छी हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है सैटरडे मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग हो गए स्टेशन की घड़ी में भैया, 9:43 यानी कि 9:43 स्टेशन क्लॉक का टाइम। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली अभी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें 61 दिन में 9.44 लाख जो है आम की पीटीओ का रिकॉर्ड टूटा है। केसर आम बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है, आपको बता दूं कहां पर, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में इस साल केसर आम का जो सीजन है वो ऐतिहासिक साबित हुआ है। महज 61 दिनों में वहां पर 90.44 लाख से अधिक आम की पीटीओ की जो है वो बिक्री दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 10 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड जो है वहां पर टूट चुका है। जो केसर आम की बढ़ती मांग है उसके बेहतर उत्पादन ने किसानों और व्यापारियों दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान सी ला दी है एंड इस रिकॉर्ड प्रदर्शनी ने एक बार फिर से गुजरात के इस केसर आम को लोकप्रिय कर दिया है। मतलब बहुत ही पॉपुलर हो गया है, बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ है ये वहां का मैंगो। देखिए भैया केसरी आम, पता नहीं भैया आप लोगों ने खाया नहीं खाया, मैंने तो कतई नहीं खाया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। और आज अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप रामगंगा विहार थाइचली लॉन में पहुंच सकते हैं, हम वहां पे आपको मिलेंगे 11 से 2, वहीं पे ढेर सारी बातें होंगी, बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें ढेर सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे लोगों से जो है आप मिल सकते हैं और हमारी पूरी टीम से भी आप वहां मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे पास मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग जी आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं आनंद भाई, कोई इंसान गम में रहे और आपका प्रोग्राम सुनकर तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएगा, थैंक यू आप इतना अच्छा शो करते हैं, सुबह की शुरुआत आपके प्रोग्राम के साथ करते हैं, मेरा भी मिजाज सही हो जाता है, प्रोग्राम सुनकर जो है मन हमारा गार्डन गार्डन हो जाता है, जानकारियाँ एक से अच्छी लेकर आते हो जी, शुक्रिया। एंड ये चौराहा गली मुरादाबाद से राजा कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आपने जो सॉन्ग सुनवाया बहुत ही अच्छा था एंड थैंक यू सो मच कि आपको हमारे गाने अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला मुरादाबाद से, लिखते हैं आनंद सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। राधे राधे पहुंचाती हैं हमारे पास अलका वर्मा जी, थैंक यू सो मच अलका मैम। बुद्धि बिहार से जुड़ी हैं रणवीर सिंह, लिखते हैं आनंद सर चेहरे तो बहुत मिल जाते हैं मगर जिनके दिल खूबसूरत होते हैं ऐसे लोग सिर्फ किस्मत वालों को मिला करते हैं। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप अरे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए आप सभी को एक सवाल की तरफ लेकर चलेंगे, छोटा सा सवाल है, अगर इसका आप जवाब देंगे तो आप हमारे शो के विनर बनेंगे आज की सुबह, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, आपको टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पे। आप मेरे को बताओ अभी जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है, ये गाना आपको पकड़ना है। कौन सा गाना है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, कोई क्लू नहीं दूंगा, कोई हिंट नहीं दूंगा, ऑफकोर्स आपको इनका ये जो म्यूजिक है यही सब कुछ क्लू आपको दे देगा यार, बताओ। व्हाट्सएप करना है आपको अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, उसको सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर, ठीक है। मैं इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। अब देखो कोई बहाना तो नहीं देना आपने जो है, मेरे को बस सही जवाब देना है, ठीक है। तो फटाफट से मैसेज करो, हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। एक प्यारा सा गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, क्रिश 3 का बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। जल्दी से व्हाट्सएप करो अभी जो म्यूजिक सुना वो कौन से गाने का है।

0: क्या बात है यार, ये गाना सुन के सच में मजा आ गया मुझे। और अभी फिलहाल आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है, लेडीज एंड जेंटलमैन, फटाफट से आपको मुझे व्हाट्सएप करके बताना है जो मैंने सवाल पूछा। अभी लौट के रहूं, सवाल रिपीट करूंगा ना।
1: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:52। आज थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि आज बहुत सारा काम निपटाना है, ढेर सारे आपके लिए जो शोज प्लान किए हैं वहां जाके अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। रात को भी हमें 1 बज गया था प्रिपरेशन करते करते आप लोगों के लिए। आप वहां आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। कौन सा ये गाना है, आइडेंटिफाई करना है। बहुत प्यारा गाना है, ब्यूटीफुल ट्रैक। व्हाट्सएप करो यार, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। अच्छा चलो मैं क्लू देता हूँ आपको, हिंट देता हूँ। इस गाने के अंदर जो यू नो हीरो हीरोइन है उनके बारे में बात करता हूँ। थिंक अबाउट अक्षय खन्ना, थिंक अबाउट प्रियंका चोपड़ा। अब इससे बड़ा क्लू क्या चाहिए यार आज की सुबह। इतना ब्यूटीफुल गाना है यार, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है। इसका म्यूजिक सुन के ही ना आप पकड़ लोगे। आप मुझे पता है बड़े फिल्मी शिल्मी हो लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हो यार। थिंक अबाउट अक्षय खन्ना, थिंक अबाउट प्रियंका चोपड़ा। पिक्चर क्लियर है, प्लीज टेल अस कौन सा गाना है ये। इमीडिएटली व्हाट्सएप करो ना। चलो जी, मैसेज करने का मेरे को अभी देखो भाई, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा जी, अभी आप उन इतना ही दे सकता है आपको। आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ कौन है आज के शो का हमारा विनर। एब्सोल्युटली, दिस इज योर आनंद स्पीकिंग। अभी के लिए मैं इतना कह रहा हूँ भाजी, वॉल्यूम बढ़ाओ और गानों को सुनते जाओ।
1: लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

कुछ चीजें आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप इनको शामिल करोगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, एक्ने यानी कि स्किन पे पिंपल्स प्रॉब्लम है, तो आपको पपाया डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत डल हो रही है तो वैसे में ऑरेंज आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपनी डाइट में। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो टमाटो, दिस इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली अल्टीमेट, यू नो, ये इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध साबित होता है, एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप टमाटर खा सकते हो डेफिनेटली। टमाटर का जो एक स्लाइस है वो स्किन पे भी आप रफ कर सकते हो 5 से 10 मिनट के लिए, उससे भी आपकी पिगमेंटेशन काफी हद तक कम हो सकती है। बट एक दिन में नहीं होगा बाबा, आपको कंटिन्यूसली वो ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राई स्किन हो गई है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आपको खीरे का इस्तेमाल करना है। खीरा एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग होता है आपकी स्किन के लिए। आप उसके स्लाइसिस को भी अपने स्किन पर रफ कर सकते हो एंड अपनी आईज पे आप होल्ड कर सकते हो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। आपको बहुत रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फील होगा। एंड इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो ऐसे में बादाम आपको काफी हेल्पफुल यू नो हो सकता है आपके लिए। अब आप गर्मियां बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करें पाजी, आप ऐसे में बिल्कुल भी बादाम को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने। 2-3 बादाम तो सफिशियंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो ये आपको दिक्कत कर सकता है ना, अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसीलिए है ना। बाकी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए अपनी डाइट में। हरी हरी सब्जियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको अपने डाइट में शामिल कीजिए। और फ्रेश ताज़ा खाना घर का बना हुआ खाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी स्किन भी ग्लो करेगी एंड आप भी ग्लो करेंगे, है ना। तो बस जितना हो सकता है ना बी नेचुरल, और सबसे अच्छी बात ना अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जब आपकी सोच अच्छी होती है ना तो उसका आपके चेहरे पर अलग ही नूर नज़र आता है। 9:57 हो गए हैं स्टूडियो क्लॉक में, आनंद के साथ हैं आप। थैंक यू वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, वंस अगेन आपका थैंक यू करेंगे। और अभी आगे बढ़ते हुए बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप बिल्कुल जाते रहिए, ऑल द बेस्ट। टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, लौट कर आ रहा हूँ इस गाने के बाद, बताता हूँ क्या है सही जवाब। आज का मेरा कड़क क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस ने दिया है सही जवाब, कितने लोगों को पता है इसका सही वाला आंसर। अभी लौट कर आएंगे तो बताएंगे कौन है आज के मेरे शो का लकी वाला विनर। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, नंबर दिस इज वेरी सिंपल, 9837 8968 96, ये नंबर है, इस पर जुड़ सकते हैं आप।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: Ladies and gentlemen.

क्या बात है, गाना बहुत अच्छा है। मलिका शरावत बहुत प्यारी लगी थी यार इस गाने के अंदर। थैंक यू फिल्म का गाना है, साथ में बॉबी देओल, सोनम कपूर और भी बहुत सारे स्टार कास्ट पिक्चर में रही। बहुत ही अच्छी मूवी है ये, गाने भी बढ़िया है यार। आगे बढ़ते हैं, मैंने आज आपसे ये गाना बिल्कुल नहीं पूछा था। देखो आज मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना था ये कौन सा गाना है, और इसके बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं।

0: हमारे पास लाइन पार से लक्ष्मी जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, एंड दिस इज द राइट आंसर, आपकी खातिर। एब्सोल्युटली हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, भैया आवाज भी हिमेश पाई जी की इतनी बढ़िया यार,
1: मेरे दिल का जहां
0: ब्यूटीफुल ट्रैक था, आप लोग कैसे नहीं पहचान पाए यार। जोरदार तालियां लक्ष्मी जी, कंग्रेचुलेशन, आज की सुबह आप बनती है मेरे शो की सुपरस्टार। एंड बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत सारी बधाइयां, और मेरी तरफ से एक गाना, इसी गाने को सुनते हुए मैं निकलता हूँ यहाँ से, आपको भी सुनवाऊंगा। रिजवान खान साहब जुड़े सही जवाब के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बनारस से हमारे साथ जुड़े थे मोहसिन साहब, इन्होंने भी मेरे को सही जवाब दिया, थैंक यू मेरे भाई। एंड मैसेज आ रहा है मेरे पास बाबू अंसारी जी का, रहमत नगर से लिखते हैं, आई होप आपकी प्लानिंग अच्छी, बहुत अच्छी रही होगी। बिल्कुल कल के लिए आपने जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे, गुड लक, थैंक यू सो मच आरजे आनंद, बहुत अच्छा आपने लिखा है, आपको भी थैंक यू सो मच इसी थॉट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी। एंड बाबू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। राम गोपाल गुप्ता बुद्धि बिहार से मुझे सही जवाब दे रहे हैं। रणवीर जी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, क्या बात है, धन्यवाद जी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप। चलो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत। गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज सुहानी, शिवपुरी से मैसेज कर रही है, हाय सुहानी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैसेज मेरे पास टेक्स्ट आया था, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है। कार्तिक गुप्ता मुरादाबाद लाइन पर से लिखते हैं, कैसे हैं आप। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ कार्तिक, आई एम एब्सोल्युटली गुड यार, आई होप आप भी बढ़िया होंगे। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपको मंडे की मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए, और कल योगा डे पे डेफिनेटली आप योगा जरूर कीजिए, कल वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो म्यूजिक जरूर सुनते रहिए, और ऐसे ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, गर्मियां बहुत ज्यादा है तो अपना जो है खास ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए खूब सारा, और अच्छी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स के लिए, अच्छी वाइब्स के लिए आप जो है सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अभी निकलते हैं यहां से, फिर मिलेंगे आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बाय।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा, और आज यहाँ बात होगी यहाँ की मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी सी भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 10:25 हो चुके श्रोताओ, और आप सभी को बस यही कहना चाहेंगे, देखिए आज की तारीख बहुत खास है क्योंकि आज है 20 तारीख, और 20 जून अपने आप में, हर तारीख अपने आप में बहुत ज्यादा खास होती है क्योंकि उगता हुआ सूरज हमें हर दिन एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी देता है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत हम अच्छे से कर सके। तो कोई भी जिंदगी में अगर कुछ छूट जाए तो उसको छूटने दीजिए, बस आगे बढ़ने की कोशिश करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपनी जिंदगी में। अगर आपने ये सोच लिया ना कि पिछली बातों को सोचकर रिग्रेट फील नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आने लग जाएगी। जब नेगेटिव बातों को आप छोड़ देंगे तो पॉजिटिव ऑरा अपने आप हो जाता है आपका। सो आपसे यही कहना चाहेंगे, आप मैसेज भेजिए जो भी गाना सुनना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप सभी के मैसेज शामिल किए जाएंगे। फिलहाल के लिए एक कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद मैं एक फेवरेट गाना अपने पसंद का सुनाऊंगी आप सभी को, और बाकी जो आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं उनको शामिल करेंगे। सो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
4: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
5: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाएंगे?
6: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। सच में जब आपको कोई अच्छा लगने लग जाता है ना, तो दुनिया में चाहे कितने भी सुंदरता भरा इंसान क्यों ना आपके सामने खड़ा हो, अच्छा नहीं लगता उसके आगे। जो एक बार आपकी नज़रों ने देख लिया और नज़रों ने उसको पढ़ लिया, परख लिया, तो बस पूरी ज़िंदगी आपको वही अच्छा लगेगा, चाहे उसे 100 गुना सोना चंगा क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में। और समय की बात करूँ तो 10:32 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फाइनली अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है। चलिए, कश्मीर से हमारे साथ मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। ओ झांझरिया, झांझरिया यानी कि गोविंदा का ये गाना सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको हम ये गाना सुनवाएंगे। सर, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच जी। और आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ मेहरीन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, वीर जारा मूवी से कोई भी ये गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली जी, हम आपको कोई भी गाना ज़रूर सुनवाएंगे।

ये हमारे साथ गीता कश्यप कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो इसके लिए गाना प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, पहली बात तो आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे अपनी ज़िंदगी में एक दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहें। और कहते हैं ना, रिश्ता तभी लॉन्ग टर्म चल पाता है जब कुछ छोटी मोटी नोक झोंक बस सहन करनी पड़ती है, कुछ थोड़ा आप कुछ थोड़ा वो, बस फिर देखिए रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है। अदरवाइज आजकल क्या है ना कि इंसानों के अंदर मतलब थोड़ा सा कुछ कहो तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन वही गुस्सा कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। समझने सबसे बड़ी बात है कि प्यार में अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। अगर ये है तो फिर भाई जो रिश्ता है ना उसमें तीसरा बंदा तो कोई आ ही नहीं सकता है। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए एक गाना सुनते हैं, ओ झांझरिया, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आर्जरीना के साथ कनेक्ट है आप और सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बचाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और जो ये प्यारा सा जो शो है जहां पर आप सभी के मैसेज शामिल किए जाते हैं आप सभी के प्यारे प्यारे गाने होते हैं इनफैक्ट आप अपने दोस्तों का नाम भी ले सकते हैं उनको डेडिकेट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि दोस्तों में नाराजगी चल जाती है व्हाटएवर जो भी कुछ हो लेकिन उनकी पसंद का आप एक गाना सुन सकते हैं ताकि वो यानी कि खुश हो जाए आपकी बातें सुनकर कि आपने उसके लिए गाना डेडिकेट कराया है। और आइए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। समय की बात करूँ तो 10:47 हो चुके हैं और हमारे पास मैसेज आता है गुड मॉर्निंग रीना मैम कैसी हैं आप बहुत अच्छे हैं जी। नई मुल अकरम जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सिसवा दौराहा से और साथ में अर्श और इरफान भाई इनके साथ कनेक्ट हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं राम जाने टाइटल ट्रैक ये गाना सुनना चाहते हैं उदित नारायण जी की आवाज़ में और सोनू निगम जी की आवाज़ में साथ ही साथ अलका याग्निक जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जिला रामपुर ग्राम खेड़ा टांडा से मोहम्मद कामिल जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं तुम दिन को दिन कह दो ओके। और ये शायरी भी लिखते हैं कुछ चीजें हम पुरानी छोड़ आए आते आते उसकी आंखों में पानी छोड़ आए ये ऐसा दर्द है जो बयां ही नहीं हो सकता दिल तो साथ ले आए धड़कन छोड़ आए। क्या बात है जी बहुत गहरी चोट लगी है मुझे लगता है आपको। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रिस्पेक्टेड आरजे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन वर्सेस पलवली जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और ये बहुत शानदार गाना सुनना चाहते हैं मेरे अखियों की ये गाना है वो ज़रूर हम आपको सुनवाएंगे। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं रीना जी क्या हाल चाल है जी बहुत बढ़िया है और ये हरियाणवी गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी आपको हरियाणवी गाना हम सुनाएंगे यानी कि 40 का तू वाला गाना सुनना चाहते हैं जो कि इनका बहुत ज़्यादा ये फेवरेट वाला गाना है। फिलहाल हम राम जाने वाला ये गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: चले ऑफिस से।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: जी हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:01 हो चुके हैं श्रोताओं, और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसके साथ हम आपके मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है।

मुरादाबाद से रणवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इनका कहना है कि कुछ रिश्तों को मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है आपने।

और आज इनकी वाइफ गीता जी का एनिवर्सरी है। आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और आपको हम एक गाना सुनवाएंगे, पिन कोड कलंदर, ये वाला हम आपको गाना मेरी तरफ से आप दोनों के लिए डेडिकेट है, और आप अपने ज़िंदगी में यूं ही खुश रहें। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। इनके दोस्त हैं सैयद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं बागों में बहार आवाज़, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, रीना जी जय श्री राम, क्या हाल चाल आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और गाना सुनना चाहते हैं। शादी करोगी रात को आऊंगा तुझको उठा कर ले जाऊंगा, ये वाला एक गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। उससे पहले यानी कि जो जनकपुरी से हमारे साथ कनेक्ट हुए थे उनके रिक्वेस्ट पर ये

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है। जी हाँ, मॉर्निंग मसाला शो में खुशी आपके साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो रीना जी बात कर रही थी, अब खुशी कहाँ से आ गई। देखिए, जब आप इतनी शिद्दत से हमें याद करते हैं ना, तो खुशी पहुँच ही जाती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, वक्त हुआ है 11:17 राइट नाउ। दिन है आज बहुत ही खूबसूरत सा सैटरडे का, 20 जून की तारीख है, बहुत ही स्पेशल है अपने आप में। और अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना, मुझसे शादी करूंगी। एंड यहाँ पर और भी ज्यादा खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। वैसे दोस्तों, ये सरप्राइज कैसा लगा आपको बताइए जरा, फटाफट से व्हाट्सएप करिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बीना जी को सुनते सुनते अचानक से खुशी आ गई है शो में, कैसा लग रहा है आपको बताइए जरा। उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा। एंड हमारे यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, तो उनको मैं क्विकली शामिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये कहती हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हम बहुत ही अच्छे हैं। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे मालूम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ एवरीवन, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए। और देखिए, सैटरडे का दिन है, अपने आप में वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। सैटरडे और संडे का बेसब्री से इंतज़ार होता है सभी को कि फाइनली यू नो संडे आ गया है। और लेकिन वैसे एक बात बोलूँ मैं आपको, देखिए मेरा सैटरडे ऑफ था, लेकिन आज मैं आई हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मैम आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अयूब जी रामपुर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राधिका का, और ये कहती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है जय माता दी, राधे राधे, रीना सिस्टर जी को। रीना जी तो अभी यहाँ पर नहीं है सर, लेकिन खुशी यहाँ पर आ चुकी है। और ये मैसेज हमारे पास आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी कांट रोड मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का, साथ में रंजीत कौर हैं, जयप्रकाश राहुल हैं, प्रियंका हैं, मन्नत हैं और गुरुक्रीत हैं, गुरु शब्द सिंह राहुल जी हैं। चोर मचाए शोर ट्रैक की रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है हमें, श्योर सर हम पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रैक को प्ले करने की। थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। और दोस्तों, अभी सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, नारियल पानी एंड जूस वाटर, इन चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आप गर्मी में एकदम यू नो हेल्दी रहें, और जो आपका स्किन है वो भी ग्लो करता रहे। तो अभी ये अमेजिंग ट्रैक आपके लिए, इंजॉय कीजिएगा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 11:33 हो चुके हैं श्रोताओं, और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले कॉलर से अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किन का क्या मैसेज आता है। ये हमारे साथ बेबी राधिका कनेक्ट होती है और 16 वर्ष की बेबी, अच्छा यानी कि एज है यानी कि 16 वर्ष। और ये मैम, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी हो, एक नंबर से ही मैसेज करिए और एक बार ही मैसेज करिए। आपकी, आई नो, मुझे पता है कि आपकी एनिवर्सरी है, तो हमने आपकी एनिवर्सरी पर हमने आपके लिए बहुत ही शानदार सा गाना प्ले किया था पिन कोड कलंदर। और मैं भगवान से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आपकी जो ज़िंदगी है और खुशियों भरा आपकी ज़िंदगी हो, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा यूँ ही खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। पर एक ही बार मैसेज करना होता है और एक ही नंबर से, ठीक है जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। सुहानी कनेक्ट होती हैं शिवपुरी मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहती है, तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई।

आसिफ जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं क्या? मतलब आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। और ये गाने की इनकी फरमाइश है, प्यार कभी कम नहीं करना। ओहो क्या बात है जी। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 11:40 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी के जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं भाई साहब, क्या ही कहे, मज़ा ही आ जाता है आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज हैं उनको सुनकर। और ये हमारे साथ यश कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं जो बैकग्राउंड में गाना प्ले हो रहा है उसी वाला, वही गाना इनको सुनना है। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, रवि सैनी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। आगे तुम्हारे दिल मेरा ना और इजहार कर, ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। और श्रोताओं, हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जब आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है सुनकर सच में। और जो गाने होते हैं आपके, मतलब समझ नहीं आता कहाँ से गाने लेकर आते हैं आप सब, कहीं से ढूंढ के, कुछ मतलब कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। इतने शानदार गाने होते हैं, आप सभी इतने शानदार गाने प्ले करवाते हैं सच में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये गाना तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये गाना तो मैंने सुना ही नहीं है। और श्रोताओं, आज आपको भी पता है कि आज हमारा इवेंट है, यानी कि जहाँ पे फ्री चेकअप, वुमनिया फ्री चेकअप की जाएगी, क्योंकि लेडीज़ है ना, मतलब हर काम में डिले कर देती है, उनको भाई परिवार की चिंता रहती है बस, अपनी चिंता तो बहुत कम करती है, और इसी चिंता में ना वो अपना देख रेख नहीं कर पाती। इसीलिए आज हमने एक इवेंट रखा है जो कि 12 बजे से शुरू हो जाएगा, राम गंगा बिहार में थाई चिली है जगह, और वहाँ पर आप आके अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे शो एंड करना पड़ेगा, और आपको हम मिलेंगे, यानी कि 3 बजे मिलने वाले हैं फरमाइश शो में, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए और मस्त रहिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करें, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसों वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहाँ लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है, देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है, संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: ईकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना

0: लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रामाणिक जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। 7. जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही। एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या

0: बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
2: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
2: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
0: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी हो।
1: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
2: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
0: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
1: अब एक छोटा सा अभ्यास। मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आप

0: का क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का, एक बार फिर से ये लीजिए, अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
2: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
1: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
2: गर्मियों में दिन में पसीना,
1: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जिससे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम के?
2: आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
1: तो है,
2: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
1: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है, तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
2: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
1: वाह,
2: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
1: करेक्ट,
2: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
1: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है, जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
2: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी कभी वो जिंदगी में ना, लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
1: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
1: जो हम बताते हैं।
2: बिल्कुल सही, वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
1: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला, तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना, एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
1: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो वो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो।
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आप नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल सही।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में हुई है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कहे।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो वो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग ही होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है। फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है? जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेकर बड़े तक और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाएं। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे, और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती है तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। साइन पे क्या करना है भाई, क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुरानी
0: याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ कहाँ घूम के आए हुए हैं भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती, वैसे ही इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना ठीक है दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करें, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है यार फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
0: वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच्चा है तू मेरा। एक काम करते हैं गाना सुनते हैं फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना। हाँ। भाई साहब, हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल। इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं।
1: हाँ।
0: ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं?
1: मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ।
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दें।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसमें हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना। तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामना नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना।
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड है, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। पर अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए। क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात
0: है ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं।
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे, और आपको यहाँ ना बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने एक गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना है।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब ये गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। उदित साहब की आवाज है ना,
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार। और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी कयामत से कयामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे। तो पहले गाना सुनो, उसके बाद लौट कर आते हैं।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना,
0: अभी हम बात कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीज थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्ढा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद। तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहाँ से हो। मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहाँ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्ढा की मूवी के ऊपर। तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई जब मैंने बनाया, तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्ढा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी, वो शायद मेरे पास, मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा, हाँ। बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो मतलब आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है। उनकी एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो दुबई
1: नहीं गुड़गांव में,
0: किंगडम ऑफ ड्रीम्स। अच्छा,
1: तो वहाँ पे ना इनकी शूटिंग थी पीके मूवी की,
0: पीके ओके, आमिर खान और अनुष्का,
1: हाँ अनुष्का शर्मा, और दोनों ही आए थे उस गाने को शूट करने के लिए, दोनों ही लोग आए थे। तो मेरी मतलब आमिर खान साहब का तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतना एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ, क्या बात है,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई। और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो, और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है, आई एम श्योर आपने देखो ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोले ना, अच्छा हमें सिखा रहा है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 105 चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप,
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों ये सिर्फ एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता,
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं। आनंद
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही है और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा, चेहरे
0: करेक्ट, आपने स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की तरफ प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
1: पूरा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद के प्रेरक कहानियों की
1: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: जब तंदूर में पकाया जाता है तो इस ऊपर से मलाई काजू का पेस्ट, मसालों का तड़का, तो बन जाती है मलाई चाप, अफगानी चाप, तंदूरी चाप, मसाला चाप, अचारी चाप, हर फ्लेवर में अलग अंदाज।
1: अब जरा आंकड़ों की बात हो जाए।
0: जरूर, 40 से अधिक होलसेलर, 300 से अधिक रिटेलर, 200 से अधिक रेस्टोरेंट और ढाबे, 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्याशी और अप्रत्याशी रोजगार। सोया चाप अब सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है।
1: यानी तंदूर की आग से जल रही है विकास की मिसाल।
2: मेरा नाम अजीत चौहान है और ये रीडिंग लड़का 2019 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बहुत इतना पहले जानते नहीं थे, वैन वी टेस्टेड इट इन दिल्ली तो हमें पता चला कि भाई चाप भी कोई इतनी अच्छी इस तरह की होती है। फिर इसके बारे में हमने करना स्टार्ट किया तो 60s से 90s के बीच में डिली हुआ था पंजाब। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया भाई इसको कैसे क्रिएटिव किया जा सकता है, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है।
1: सर, ओडीओ की योजना सरकार ने लॉन्च करी है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?
2: ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है क्योंकि जिस भी देश में जितने ज्यादा बिजनेसेस स्टैब्लिश होंगे वो उतना फास्ट ग्रोइंग होगा। तो ओडीओसी में क्या है कि जितने भी युवा हैं अपने, कोई छोटा मोटा किसी भी तरह का रेस्टोरेंट या कुकिंग चलाना चाहता है तो ओडीओसी योजना में उनको सब्सिडी के थ्रू लोन मिल जाता है, उस पर काफी सारी सब्सिडी मिलती है। और सबसे अच्छी बात एक और करी है सरकार ने कि बीच में से मिडिल मैन खत्म करके सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे डाला है कि आप सीधा करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करते तो पीछे से अपने आप ही, क्योंकि उसको रिजॉल्व करना होता है कुछ ऐसा है। और जितना भी सरकार के जितने भी लाइसेंसेज है उसको सब इंस्ट्रक्शन है कि इन लोगों को इसको किया जाए कि आराम से इजीली सबको सारा वो मिल जाए, जितने भी लाइसेंस मिले हैं जिस तरह का भी है वो सब चीजें मिल जाए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ओडीओसी योजना सरकार ने स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच।
1: अब बात करते हैं स्वाद की, जिसके बिना दाल रोटी अधूरी लगती है।
0: उत्तर भारतीय खान पान में अचार का खास स्थान है। गाजियाबाद के हरी मिर्च का अचार पारंपरिक विधि से तैयार होता है। ताजी हरी मिर्च, सरसों का शुद्ध तेल, सौंफ, मेथी दाना, राई, हल्दी और नमक का संतुलित मिश्रण और फिर धूप में प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है।
1: और सेहत,
0: हरी मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सरसों के तेल को आयुर्वेद में एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। आज 150 से अधिक कारीगर, 30 से ज्यादा होलसेलर और 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार, ये सभी इकाई जिलों में उद्योग केंद्र के निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकृत है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
1: ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है इसकी नींव कहाँ से पड़ी?
0: इसकी शुरुआत हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट यानी ODOP योजना से। इस योजना का उद्देश्य था हर जिले को पारंपरिक पहचान को उद्योग और बाजारों से जोड़ना। इसकी सफलता की बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभिनव कदम उठाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन यानी ODOC स्कीम। अब हर जिले का एक खास व्यंजन भी ब्रांड बनकर उभरेगा।
1: लेकिन RJ सिर्फ पहचान बना देना ही काफी नहीं होता, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी तो चाहिए ना?
0: बिल्कुल, और यही काम सरकार पूरी सक्रियता से कर रही है। सरकार ने सोया चाप और अचार उद्योग से जुड़े उद्यमी को कई नई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान की सब्सिडी, आसान ऋण सुविधाएं और मुद्रा योजनाओं से आर्थिक सहायता, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, फूड सेफ्टी पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, महिलाओं और युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की व्यवस्था।
1: यानी अब छोटे व्यापारी भी बड़े सपने देख पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उद्यमी सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रहें बल्कि उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचें। प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
1: और यही तो है असली विकास, जब स्थानीय हुनर को सही मन और सही समर्थन मिले।
0: सही कहा आपने, आज गाजियाबाद का स्वाद सिर्फ लोगों की थाली तक नहीं है बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी और आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है। राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मंच, आकर्षक ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग, ई मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, आसान ऋण और सब्सिडी प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इससे छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है।
3: नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जनपद गाजियाबाद में उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के नाम से लॉन्च करी थी, जिसके माध्यम से जो हमारे परंपरागत आर्टिजन्स हस्तशिल्पी या हमारे जो परंपरागत उत्पाद रहे हैं 75 जनपदों में, उनको बड़े स्तर पर कामयाबी मिली और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने भी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो औद्योगिक उत्पाद हैं, उनको या आर्टिजन्स हैं, उनको हमने कवर किया। अब उसी कड़ी में हमारी एक नई योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार हमारे समस्त जनपदों के जो पारंपरिक रूप से जो खाने पीने की चीजें या व्यंजन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। हमारी जनपद की कुजीन, जैसा कि आपको पता है, गाजियाबाद में सोया चाप और मिर्च का अचार दो उत्पाद यहाँ ODOC के तहत चयनित किए गए हैं। अपने जो हमारे परंपरागत बनाने वाले लोग हैं, इसको उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको टूल किट्स भी देंगे और उनको लोन के माध्यम से जो उनका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग उनका जो भी यूनिट औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या अपने घर पे कुटीर उद्योग के में अगर वो बना रहे होंगे उसको, या रेस्टोरेंट के माध्यम से सोया चाप अपना बेच रहे हैं, तो उनको हम फाइनेंस भी देंगे कि वो अपने काम को और अच्छा कर सकें। और उसके बाद उनको बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और उनको मार्केट अवेलेबल कराने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।
1: ये कहानी सिर्फ चाप और अचार की नहीं है,
0: बिल्कुल आत्मनिर्भरता, नवाचार और सशक्तिकरण की कहानी। आज गाजियाबाद का सोया चाप दिल्ली NCR के बड़े होटलों तक पहुंच चुका है। सरकार की नीति स्पष्ट है, स्थानीय को वैश्विक बनाना है।
1: मुझे तो अब भूख लगने लगी है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अगली बार जब आप गाजियाबाद जाएं तो एक प्लेट मलाई चाप और साथ में हरी मिर्च का अचार जरूर चखिए। उस स्वाद में आपको मेहनत, परंपरा और सरकार की दूरदर्शी सोच तीनों का मेल मिलेगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति और सही दिशा मिले तो हर जनपद विकास की मिसाल बन सकता है।
0: विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं, विकास झलकता है थाली के स्वाद में, युवाओं की रोजगार में और उद्यमियों के आत्मविश्वास में।
1: नमस्कार,
0: फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए स्वाद और एक नए विकास के साथ।
1: यही है
0: विकास का प्रदेश,
1: उत्तर प्रदेश।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: چلیے شروعاتوں, اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت. آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف اے مراد آباد 89.6 ریڈیو, بجاتے رہیے گنگناتے رہیے.
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद.
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद.
4: कॉल 8826213131.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP यूपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं।

0: हैं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
1: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
0: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
1: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
0: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टेबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है, टीबी में हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जलभराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
6: हेलो भावना जी।
7: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं, तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहां से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
6: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा, जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है, तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
7: फोबिया।
6: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
7: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है, तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
6: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है, तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर हो जाता है।
7: एग्जैक्टली।
6: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
7: एग्जैक्टली।
6: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओं के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता, शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फेब्रुअरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
7: एग्जैक्टली
6: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
7: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है? क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
5: और आशीष एक बात और मैं कहूँ कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं।

0: का हो
1: yes.
0: एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है. इसमें आपको पता है, मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
1: जी.
0: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया. तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
1: जी.
0: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास 10th में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
1: जी.
0: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना, ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया. आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
2: बिल्कुल
0: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं. सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
1: जी.
0: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन
1: Correct.
0: एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उसे मुझे आगे बढ़ाना,
1: उसे प्रूव करना है कहीं. लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा. ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
0: ये जो डर है ना, ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा. क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया.
1: करेक्ट, वही
0: तो
1: वही चीज. हाँ.
0: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी. हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा. देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता. आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है, या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे.
1: एग्जैक्टली. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए. क्यों भावना?
2: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया

0: नहीं, आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
1: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
0: जी,
1: जब तक आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
2: एग्जैक्टली,
0: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
1: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
0: जी,
1: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिता जी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
2: Correct.
1: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
2: करेक्ट, और वैसे भी देखिए, स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 MHz अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
1: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतने प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर के। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है।
2: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
1: एग्जैक्टली लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है, और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
2: जी,
1: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा।
2: एग्जैक्टली।
1: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
2: जी।
1: बहुत नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही है, घबराहट हो रही है। आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी
2: प्लीज,
1: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं, और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाए, देख पाए कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
2: ठीक है।
1: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए।
2: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं, कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
1: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते।
2: बहुत बढ़िया, करेक्ट।
1: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए
2: जी।
1: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को, जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए, सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो, बात खत्म हो जाती है।
2: ठीक है, मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
1: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का।
2: ठीक है,
1: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है, फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है।
2: एग्जैक्टली।
1: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा। शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। जब समय आ गया तभी करना है,
2: लास्ट आर
0: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई बच्चों के लिए, आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
2: करेक्ट
0: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
2: नहीं बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं भावना, आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो। तो
1: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
2: कंटेंट आता है उस पे।
1: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ये आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
2: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
0: मोबाइल से पढ़ो,
1: लेकिन मेरा, फिर मैं बोलूंगी, मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
2: करेक्ट,
1: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए। लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
2: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहे, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी।
1: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने,
2: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं।
1: परफेक्ट।
2: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया, या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
1: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पे भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता। कई बार मुझे लगता है कि
2: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर्स से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
2: अगर
1: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
2: जो
1: होना चाहिए
2: लगता है हमें,
1: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए। ये बिल्कुल मत पूछिए कहाँ से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है।
0: जी
2: जी
1: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहाँ से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूँ, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ,
0: बिल्कुल
1: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
2: जी सही बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक
1: है।
2: ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वॉइस उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
1: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे, बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया, 1 2 3 4 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से। वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
2: स्टे किया,
1: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
2: ओके।
1: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम एनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
2: करेक्ट,
1: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
2: जी।
1: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
2: ठीक है।
1: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है, कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
2: एग्जैक्टली।
1: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11 o'clock, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
2: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
1: आपको टाइम शेड्यूल कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो है ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला।
2: जी।
1: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
0: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं, रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का, हम क्यों पढ़ाएं उन्हें। आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल है सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में

0: बच्चा वापस आ जाता है, उनको पढ़ाई की ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी वहाँ के जो माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है?
1: भावना जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं।
0: जी
2: बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं हम,
2: और वो भी सरकारी नौकरी से,
1: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो,
0: संभाल रही है,
1: लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
2: या संभाल सकती है,
1: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए, उसमें, और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
0: बिल्कुल
2: ठीक है, बहुत सारी चर्चा हुई है मुझे लगता है कि, लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
1: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
2: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
1: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
2: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
1: बहुत जल्दी।
0: कितने घंटे देखें मोबाइल?
1: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
0: माँ बाप कितने घंटे देखें?
1: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
2: Correct.
1: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
2: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
1: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया,
2: जो होगा
1: वो देखा जाएगा।
2: ठीक है, बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
1: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
2: योगा करना चाहिए?
1: बिल्कुल करना चाहिए।
2: बच्चों के लिए कितना फिट है करना योगा?
1: बच्चों के लिए 110% फिट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
2: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
1: बिल्कुल देना चाहिए।
2: कितने टाइम का?
1: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स के बाद आप, अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
2: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।
0: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी।
1: और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो, जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
2: Exactly.
1: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
0: जी।
1: है। तो बेहतर है एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
0: बिल्कुल श्रोताओं पूरा आसमान आपका है।
2: बिल्कुल एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों को सुनने का भी मौका मिले और ग्रेजुअली वो समझ भी पाएंगे कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है।
3: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: रेडियो KGM यूकूंज 89.6 FM।
3: हेलो दोस्तों, मैं हूँ RJ अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी पर रेडियो KGM यूकूंज। आजकल की हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा भागदौड़ भरी है, जिम्मेदारियां हैं, काम है, लक्ष्य हैं, है ना, और अपने लिए समय निकालना तो जैसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है और लगभग हम भूल ही जाते हैं कि हमें अपने आप को भी समय देना है। तो योग हमें याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है कभी कभी ठहरना, कुछ पल के लिए अपने लिए टाइम निकालना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने मन को सुनना, अपने शरीर का आभार व्यक्त करना। योग केवल व्यायाम नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यदि हमारा मन शांत है तो हम हर चुनौती का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। विश्व भर में लाखों लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, लोग अपना रहे हैं, तो आप भी कल के दिन से शुरू कर दीजिए योग, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन दोनों ही जरूरी है। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए सुनते हैं।
4: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
5: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू की घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मुस्कान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और उस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मुस्कान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ अचारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो कितने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा, अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से निपानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो सभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आंच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं। जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उठे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर # अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सुबह।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय कर रहे हैं अब। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। और आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि रीना आज जो सैटरडे में शाम के टाइम कैसे आ गई है ना लेकिन रीना शाम, मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर में नहीं आई तो इस टाइम आ जाती हूँ आपसे बात करने के लिए श्रोताओं, क्योंकि आपसे बात करे बिना मन लगता कहाँ है ना, मन नहीं लगता है। सो आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है, बस कनेक्ट रहिए, ढेर सारी बातें करेंगे। बस आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: नहीं तो मुझे बुला था।
1: नहीं आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुला आपको। जमाने की तरह
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: हेलो जी, हेलो। गुड वाली की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 6:34 हो चुके हैं। जब 5 आते हैं ना श्रोताओ तो लगता नहीं है कि 6 एकदम, मतलब अभी बाहर के वेदर देख के लग नहीं रहा है कि टाइम भैया 6 हैं, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है ना कि पूछिए मत। इस गर्मी में ऊपर से ओए होए, और मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, चलिए उनको शामिल करते हैं। और ये मैसेज है, अच्छा लगा वीडियो रीना, ओह माय गॉड, क्या लिखा है सर आपने। अच्छा, दोपहर में नहीं सुने तो शाम को तो मिल गई हो आप। हाँ जी, हम शाम को आज सैटरडे हैं और सैटरडे को मेरे शाम का शो होता नहीं है, बट मैंने सोचा कि नहीं, आप सभी से बात करना जरूरी है क्योंकि दोपहर के समय मैं नहीं आई थी। और गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। वीके सागर जी कनेक्ट होते हैं, डांस कर रहे हैं, क्या बात है जी, बड़े ठुमके लगा रहे हैं आप। और अगले मैसेज की बात करूँ तो, हेलो रीना मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, वेलकम मैम, धमाकेदार एंट्री, बिंदास सॉन्ग, थैंक यू सो मच जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और हम मैम, हमें तो लग रहा था आप शाम को नहीं आएंगी क्योंकि थक गई होंगी आप इसलिए, और आपने भी कहा बिल्कुल। हाँ मैडम, मैं मतलब थक तो गई हूँ, मैं आपको मेरी आवाज़ों से ही लग रहा होगा आई नो लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं लगने

और छत पर बैठ के आप मेरा शो सुन रही हैं, क्या गर्मी नहीं लग रही आपको? माय गॉड. और आगे लिखती हैं, और हमें भी बताना मैम आप सभी का शो कैसा रहा, आप आई क्यों नहीं मैम ये बताइए पहले. तो हम सभी का शो आज का जो इवेंट था सच में बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था. आप सभी ने मतलब इवेंट तभी सक्सेस होता है जब आप सभी सपोर्ट करते हैं, आप सभी वहां पर आते हैं, क्योंकि हम आप सभी के बिना कुछ भी नहीं है. जब आप सभी साथ रहते हैं तो हर काम सक्सेसफुल हो जाता है. बहुत अच्छा इवेंट रहा हमारा, सिर्फ और सिर्फ आप सभी की बदौलत है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया कि इतना सारा प्यार देते हैं आप सभी. और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए. और इनके कहने की तबीयत ख़राब चल रही है, कोई बात नहीं जी, आप पहले ठीक हो जाइए, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आप आज इवेंट में आती तो फ्री हेल्थ चेकअप भी हो जाता, क्योंकि आज फ्री हेल्थ का कैंप भी उसमें लगा हुआ था कि आप फ्री में चेकअप करवा सके. लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब भी कुछ ऐसा इवेंट होए तो आप ज़रूर आइएगा और हमारे साथ एंजॉय करिएगा. अच्छा लगता है जब आप सभी आते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी के साथ. तो अभी मैं लेती हूँ एक म्यूज़िकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ. कोई बात नहीं, मिस हो गया, अगली फिर इवेंट ऐसे ही लेकर आएंगे जब आप कनेक्ट होइएगा, ठीक है.

की सागर जी का मैसेज आता है कि हमें किसी ने कहा ही नहीं, अरे सर ये ओनली ऑल लेडीज लेडीज के लिए था, आपको भाभी को भेजना चाहिए था ना क्योंकि लेडीज देखो घर पे जो हमारे प्यारी वुमनिया हैं वो काम करती रहती है, कभी अपने बारे में नहीं सोचती, हमेशा सोचती हैं कि घर वाले अच्छे रहे, इन्जॉय करते रहे। तो हमने उनके लिए ये इवेंट रखा था कि ताकि कोई भी दिक्कत होए, और कभी किसी किसी घर में तो ऐसी होती हैं कि मतलब खुद के लिए एक्शन नहीं ले पाती है, तो सिर्फ उनके लिए इवेंट था। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जितनी वुमनियाँ सुन रही हैं अपने लिए एक्शन ज़रूर लीजिए, आगे बढ़िए, जब तक आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहने को कह दिया कि लड़की आज़ाद है, लेकिन क्या अभी भी वो डिसीज़न ले पाती है खुद से? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं ले पाती है। तो यही है, और हमारा इवेंट यही था कि हर लेडी, हर वुमेन, हर लड़की, आपके साथ कोई भी गलत होता है, इतने सारे हेल्प नंबर है, आपको पता होना चाहिए, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और अपने घर में अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए तो आवाज़ उठाइए, अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। और भी ढेर सारी बातें करेंगे, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग है आज जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं श्रोताओं, और एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सभी से पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे श्रोता है कि एक बार क्वेश्चन पुटअप करो भैया, आंसर की ना बारिश होने लग जाती है। समझो कि बस अब वेदर थोड़ा ठंडा होने वाला है, ये वाली फीलिंग आती है। सो क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब लेडीज है वो आसानी से बता पाएंगी इस क्वेश्चन का आंसर, और मुझे लगता है कि जो मैन है वो और भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सच में बताऊँ तो मतलब उनके चॉइस एकदम बहुत अमेजिंग होते हैं, लाजवाब होते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है साड़ी पहना जाता है या बांधा जाता है, आपने मैसेज करके बताना है आज। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये आता है हमारे पास, इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी इनके दोस्त हैं, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, और आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं, और आज का इवेंट कैसा रहा? सर आज का इवेंट आप सभी का आशीर्वाद है, सो आप सभी की ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा रहा हमारा इवेंट, और आगे भी बस आप सभी का यूँ ही सपोर्ट मिलता रहे तो हम और भी अच्छे काम करते रहेंगे। बस आप सभी की ज़रूरत चाहिए, आप सभी साथ होते हैं तो हर काम अपने आप अच्छा हो जाता है। सो आज का जो क्वेश्चन है मेरा यही है कि अक्सर मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। सो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर डाउट है, क्या आपके मन में भी वही डाउट है या फिर आंसर कड़क होने वाला है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में साड़ी जो होती है ना उसको बांधा जाता है या फिर पहना जाता है, ये आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896। आप सभी के मैसेज से ही पता चल जाएगा कि भैया सैटरडे में कौन है, कौन कौन है जो रेडियो सुन रहे हैं हमें, क्योंकि सैटरडे में मोस्टली मैं आती नहीं हूँ, मेरी छुट्टी होती है इस टाइम। सो मैं जानना चाहती हूँ, आप सभी के मैसेज से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन इस टाइम रेडियो सुन रहा है, कौन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आखिरकार साड़ी पहना जाता है या बांधा जाता है, सोचिए। और ये गाना

क्या बात है जी, बड़ा ही फैंटास्टिक आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी के मैसेज की बारी है, आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे और यहाँ से लेंगे जाने की इजाजत। लेकिन जाने से पहले आज का कड़क सवाल, साड़ी बांधी जाती है या पहनी जाती है, इसका आंसर आपने पहुँचाना है। हमारा नंबर है 9837896896। देखिए, नंबर याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सच बताओ, बस चार नंबर आपने याद करने हैं, 9 और 8 3 7। उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी 896 896, बस बड़ा सिंपल सा नंबर है, बस चार डिजिट यानी कि फर्स्ट के याद करने होते हैं, 9837, उसके बाद 896 896 पर अपना आंसर पहुंचाइए। और एक बहुत ही प्यारा गाना उसके बाद लौट कर आते हैं और आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे।

आय जान नहीं लेना है किसी का, है ना। बस मोहब्बत हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है ना जी। चलिए, आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:56 हो चुके हैं, और टेम्परेचर की बात करूँ वहीं तो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी ताबड़ तोड़ वाली है। इतनी गर्मी है ना भैया कि ओ माय गॉड, लगता है अभी बजने तो जा रहे हैं 7, लेकिन फीलिंग आती है कि 4 बज रहे हैं अभी। क्या कर सकते हैं ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये गर्मी तभी रोकी जा सकती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, अदरवाइज आने वाले समय में टेम्परेचर यानी कि 60 डिग्री पहुँचेगा तो सोचिए उस टाइम क्या हाल होगा। मतलब पक्षी तो आपको दिखेंगे नहीं, और इंसानों की जो हालत होगी उस शब्दों में भी नहीं बयां कर सकती हूँ। इसीलिए जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए, क्योंकि हम दूसरों को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करिए। हम पेड़ लगाएंगे तो कहते हैं ना, अगर आपने पेड़ लगाया आपको देखकर और चेंज होंगे, फिर उनको देखकर और चेंज होंगे। ऐसे देखिए, अगर एक घर में भी एक पेड़ लगता है तो कितने घर हैं, हर घर में पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे। और जब यही पेड़ लगेंगे तो बारिश टाइम पर होएगा, बिना बिन मौसम बारिश भी नहीं आएंगी। कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान घर पर नहीं आते, इसीलिए बिन बुलाए मौसम भी ख़राब नहीं होने वाले, बारिश भी नहीं आने वाली। हर समय का अपना अपना समय होता है। उसी टाइम, अब इस टाइम बारिश, सोचिए इस टाइम बारिश होने का कोई सीज़न नहीं है। बस अब यानी कि जैसे जुलाई शुरू हो जाएगा, बरसातें भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि खेत में धान लगना भी शुरू हो जाता है ना। और आइए आप सभी के मैसेज शामिल करते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास। और ये मैसेज यानी कि हमने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आखिरकार साड़ी बांधी जाती है या फिर पहनी जाती है। तो हमारे पास मैसेज आता है, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। स्वाति एंड नेहा कनेक्ट होती हैं और इनका कहना कि साड़ी बांधी जाती है। ओके। और ललिता कश्यप जी का भी कहना है कि साड़ी पहनी जाती है। अच्छा, पहनी भी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे साथ आई एम टीना फ्रॉम कुंदनपुर लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है साड़ी को बांधा जाता है। ओके। ये इरशाद हुसैन अंसारी जी कहते हैं बांधी जाती है। ओके। और अगले मैसेज की बात करूँ तो जय श्री राम रीना जी बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि साड़ी बांधी जाती है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो विक्की सागर जी कहते हैं बांधी जाती है। सवाल, वाह क्या बात है जी, ऐसे सवाल लेकर आती हूँ सर मैं तो। अगले मैसेज की बात

ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इनका नाम है माही विश्नोई। खुंथरा से ये कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है साड़ी बांधी जाती है। और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सिस्टर, थैंक यू सो मच मैम कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी ने राइट आंसर दिया है, देखिए साड़ी बांधी भी जाती है और साड़ी पहनी भी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे साड़ी पहनी जाती है, साड़ी तो बांधी जाती है ना, लेकिन जो रेडीमेड साड़ी आती हैं वो पहनी जाती हैं। तो इसके दो आंसर है, साड़ी बांधी भी जाती है और पहनी भी जाती है। चलिए श्रोताओं, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त, क्योंकि समय की बात करूँ तो 7:01 हो चुके हैं और आप सभी के लिए एक प्यारा सा न्यूज़, उसके बाद हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाज़त। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस

0: गर्मी में अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए। बाय, मिलते हैं मंडे को यानी कि शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: कैसे हालचाल है, मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सभी का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। सो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हैं आप? हाउ आर यू
8: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
7: जी सर, इट्स माय प्लेजर सर, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
8: मैं डॉक्टर SP सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
7: ऑलराइट,
8: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
7: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
8: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
7: ऑलराइट, अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
8: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
7: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
8: नहीं डेफिनेटली मजा तो आ
7: रहा है। चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
8: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं, तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया, क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
7: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में, पूछूं?
8: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
7: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
8: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
7: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
8: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
7: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
8: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
7: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
8: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
7: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
8: देखिए, बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
7: ओके,
8: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
7: okay.
8: तो हमें ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
7: okay.
8: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
7: okay.
8: जो हम लोग अवॉइड,
7: क्या बात है, तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, आप ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब से?
8: देखिए, आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
7: करेक्ट
8: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
7: अब नहीं चलता है,
8: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
7: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
8: एग्जैक्टली,
7: ऑलराइट। अच्छा सर जी, प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
8: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
7: ओके, अच्छा, ओके। सो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन जिसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
8: सर, दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
7: ओके,
8: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
7: ओके,
8: और मतलब इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
7: ओके,
8: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है।
7: okay.
8: और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
7: ओके, डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारियां आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज के जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
8: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
7: ओके,
8: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
7: ठीक है,
8: बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
7: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
8: डेफिनेटली,
7: ऑल राइट। जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो क्या ही चला जाएगा,
8: ऐसा नहीं चलेगा।
7: ऑल राइट,
8: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से। अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
7: ऑल राइट, अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को पांच पांच महीने छह छह महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
8: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह से यूज करते हो। कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो एक महीने में खराब हो जाता है।
7: ओके,
8: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट छह महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
7: ऑल राइट, चलिए तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, तो ये क्या सही बात है?
8: इट्स वेरी ट्रू। देखिए, जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं, पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआ होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाते हैं।
7: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
8: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
7: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
8: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
7: समझ,
8: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता।
7: हाँ, बिल्कुल
8: ठीक है। बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
7: ओके,
8: मतलब जिन लोगों को देखना वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
7: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के उसके आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
8: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
7: ओके,
8: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया,
7: ओके,
8: और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रहेगा, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गरम लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
7: तो सर, इससे बचने का,
8: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो।
7: ओके,
8: हाइजीन, ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
7: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
8: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद एक से डेढ़ महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है, वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। और आप अगले दो महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो। तो मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
7: बिल्कुल,
8: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
7: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
8: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
7: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
8: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है, आप पेन के खाके दांत का इलाज नहीं कर सकते। सकते।
9: करेक्ट।
8: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
9: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
8: जी
9: ओके। सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
8: सर, मुंह से दुर्गंध के दो कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
9: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है?
8: नहीं, बदबू के दो कारण है, एक तो दांतों दांत है, अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
9: ओके।
8: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है,
9: वो बदबू करती है। ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
8: सर, ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
9: ओके।
8: वंस ए व्हाइल ठीक है, हां भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
9: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में
8: वन से वाइप
9: जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
8: सर देखिए, ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है।
9: ओके।
8: पायरिया ऐसी बीमारी,
9: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
8: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब पायरिया, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
9: ओके।
8: वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा।
9: ओके।
8: और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
9: ओके।
8: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
9: जैसे
8: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए।
9: ओके।
8: ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। तो हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
9: जी,
8: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
9: अच्छा।
8: और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखती लगा रही तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये मिथ है कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है।
9: ओके।
8: इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटखा क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल दाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा यार तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी दाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल दाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब दाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको दाढ़ उखड़वा, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
9: ओह माय गॉड।
8: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
9: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
8: हाँ, गलत है वो।
9: ओके।
8: तो अब वो, अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
9: बिल्कुल।
8: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
9: बिल्कुल
8: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
9: ओह माय गॉड, कई बार ही होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया है एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो। आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
8: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
9: ओके,
8: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इतना नुकसान है, बाकी

0: तो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है, वो एक अलग चीज है।
1: ओके अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत? क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके
0: वो थोड़े से पीले होते ही हैं, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है। तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती।
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है। तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली ब्रश से ही साफ
1: मिला के। तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं जागो, अब ब्रश करने की बारी, अब जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। डॉक्टर साहब आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं डेफिनेटली, मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आप मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती है।
0: Exactly.
1: आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अब किसी काम के नहीं रहे, और वो कहीं बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं, तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं, और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं।
1: ओके
0: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली वो सारा स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है, तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटोप्रोजोल, ठीक है, रेविप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा।
1: करेक्ट,
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है, जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस कब और इन सब चीजों से गुजरना।
1: ओके, सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी की ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल डाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है, बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: ओके, बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है, अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा,
1: प्रॉपर होगा।
0: बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए,
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया, इनको जरूरत है,
1: जरूरत है, करेक्ट।
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किनमानी वो नहीं खाएगा,
1: करेक्ट,
0: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है, और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं, और यकीन मानिए अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
1: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके,
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर कुछ और कहना चाहते हैं आपसे, मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं अभी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा नहीं
0: आएगा, सही कह रहे
1: हैं। तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू
1: सर, थैंक यू सो मच।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के
4: संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये महिलाओं को बिना किसी डर के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय मांगने और सहायता।
5: दिस वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट इन द ईयर 2001। इट कमेमोरेट्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। द UN रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR रिपोर्ट्स दैट ओवर
6: जो डर को डराते हैं।
7: अरे थारी किस्मत में गुलामी लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिले करे।
5: Leading to a high death toll.
4: 1887 में आज के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस बनकर तैयार हुआ। पहले इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पर रखा गया। 1996 में नाम बदलकर किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और आज ये देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है।
5: 1863 वेस्ट वर्जीनिया वाज ऑफिशियली एडमिटेड टू द यूनियन एज अ 35th US स्टेट। 1948, currency reform in 3 western zones of Germany was instituted by Allied military governments. Old Reichsmark is invalidated as Deutschmark became the new currency.
4: में पुणे में आज के दिन SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
5: 1963 द रेड टेलीफोन इज इंस्टीट्यूटेड। द हॉटलाइन बिटवीन द US एंड द सोवियत यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
4: 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता।
5: ऑल्सो इन 1975 दिस डे स्टीवन स्पीलबर्ग थ्रिलर जॉज प्रीमियर्ड इन थिएटर्स क्रिएटिंग द मॉडर्न समर ब्लॉकबस्टर जॉनरा। एंड 1991 German Parliament moves to Berlin from Bonn.
4: सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर की। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक नियुक्त हुए। अपने शुरूआती समय में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर ने एक साइकिल की दुकान खोलकर जीवन संघर्ष प्रारंभ किया। बाद के समय में अपनी मेहनत और कठिन लगन से इन्होंने किर्लोस्कर की कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। किर्लोस्कर ने जीवन में पहली बार एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो अपने भाई के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर्स नाम से साइकिल की दुकान खोली और अतिरिक्त समय में साइकिल बेचते, उनकी मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते।
5: And today is the birth anniversary of American playwright Lillian Hellman, who wrote the screenplay for motion pictures as well as Broadway. Her dramas forcefully attacked injustice, exploitation and selfishness, and she has also made several English adaptations of French plays. Hellman's first play was The Children's Hour in 1934. It was a Broadway success and adapted into 2 films later on. And today is friends 20th June 1942, birth anniversary of co-founder of the Beach Boys, Brian Wilson, who also left us this day the same month, that is June 11 last year. The chief songwriter of the legendary group's biggest hits, Brian ended up influencing countless artists that came after him. The genius is known for his unorthodox approaches to writing songs and for his expert use of recording techniques. But right now, friends, a folk blues standard covered by Brian and Company. It is playing, it's going to be playing right now, a huge international bestseller of the 1970s. It's called Cotton Fields.

0: घोषणा भी की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार युक्त बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जीपीएस सक्षम वाहनों का उपयोग तथा गोपनीय सामग्री को सील बंद प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाने की व्यवस्था शामिल है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा यशोत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, राज्य सेवा, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोत्सव केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में लगभग 100 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल दिल्ली सरकार भी योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ योग करेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है जो वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति को मानसिक शांति ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील भी की है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेंचुरी परिसर में विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां उगाए जा रहे विभिन्न देशी वृक्षों पौधों और जैव विविधता संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के आज आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह देखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध और विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और अपनी शिकायतें, चिंताएं और सुझाव साझा किए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत अब तक 209 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से 161 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी और समन्वित जांच से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट प्रवेश पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो मेरे अकेले RJ आनंद का नहीं, मेरे साथ दो और कमाल के लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे आज हम, और वो आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं ये मैं नहीं वो ही बताएंगे, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि जब रेडियो पे कोई एक बार अगर सुनाई देता है तो फिर उसकी पकड़ और पहचान दोनों ही हो जाती है। यही तो खास बात है फिर मुरादाबाद में, जो आते हैं फिर वो फेमस हो जाते हैं। चलो जी, ये तो हुई हमारी थोड़ी सी फालतू बात, अब करते हैं काम की बात। आज हमारे स्टूडियो में दो लोग बहुत ही कमाल के हैं जैसे मैंने बताया, और दोनों के नाम डेफिनेटली मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन्हीं से उनका तारूफ जो है आपसे सीधा करा दें तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्योंकि ये आज की जो बेहतरीन महफिल है ना, ये आपको बहुत कुछ आनंदित करने वाली है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को सुनने को मिलेगा। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे प्यारे से जो अब हमारे श्रोता हैं और हमारे प्यारे गेस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका FM मुरादाबाद में। एक बार अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, पहले मैं चाहूंगा आप सर आपसे जो है थोड़ा परिचय हो।
5: ये तो लखनऊ की संस्कृति थी कि पहले आप ये मुरादाबाद में भी लागू हो गई है। जी
4: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, दूसरी आवाज आपने पहली आवाज से पहली सुन ली, लेकिन उनको मुखातिब आपसे थोड़ी देर के बाद ही कराएंगे, क्योंकि थोड़े स्पेशल लोगों को वेट कराना चाहिए। जी सर, आप थोड़ा सा बताएं।
6: जी जी बिल्कुल आनंद जी, मैं हाजिर हूँ। श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: जी जी बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार।
6: सब भी मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं हूँ मनोज बनू, मुरादाबाद से, और दिल से शायर भी, कवि भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी कहने की कोशिश रखता हूँ। और मेरे साथ जो साथी आज एक अजीम हस्ती है जो मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखती है, शहर जिगर से ही ताल्लुक रखती है, ये हैं शुभम कश्यप जी। शुभम कश्यप जी आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। शुभम कश्यप जी, कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को।
5: FM मुरादाबाद 89.6 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शुभम कश्यप, शुभम मुरादाबादी, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आप सबसे मुखातिब होने का ये मौका मिला है। उसके लिए मैं FM मुरादाबाद की सभी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे मैं मनु जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस लायक समझा कि FM मुरादाबाद के सभी श्रोताओं से मैं रूबरू हो सकूं।
6: नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे श्रोताओं के लिए आज एक नया नाम है। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपकी जो छाप रहेगी वो काफी लंबे समय तक हमारे श्रोतागण याद रखेंगे।
4: बहुत ही बढ़िया, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुभम जी, जो अभी आपने जैसे कि दो लाइनें बोली और सर को आपने इंट्रोड्यूस भी किया प्रोग्राम में, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक मजे की बात ये कि आपको ये लेकर आए, फिर आपने इन्हीं को क्रेडिट दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये होना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो उसका वो मत भूलिए, थैंक्स तो करना बनता है। सर आपको भी धन्यवाद, मनु जी आपको भी
6: थैंक्स टू यू। मैं बिल्कुल धन्यवाद अदा करता हूं। और अभी भाई कह रहे थे कि ये लखनऊ की रवायत है कि पहले आप, तो क्यों ना हो, हमारे यहाँ की जो राजधानी है एक्चुअल वो
4: लखनऊ ही राजधानी है,
6: हमारे योगी बाबा लखनऊ में विराजते हैं।
4: बिल्कुल,
6: तो लखनऊ है तो हम
4: हैं। ऐसी बातचीत तो बिल्कुल आपने सही कहा मनु जी, बहुत अच्छा बोला आपने, लखनऊ तो लखनऊ है, और लखनऊ वालों की बात ही अलग है। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में तो नहीं मुरादाबाद में हैं। फिलहाल एक बढ़िया सा गीत लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे, तो फिर ये जो महफिल है इसको और अच्छे से सजाएंगे। शुभम जी हमारे साथ हैं, मनु जी हमारे साथ, तो आप कहीं मत जाइए, मेरा भी साथ आपके साथ ऐसे ही बरकरार।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने प्रोग्राम में सुना, और आज का ये जो प्रोग्राम है बेहद खास है क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत ही उम्दा खूबसूरत बना रहे हैं। हमारे साथ मनु जी हैं और साथ में शुभम भैया हैं, और शुभम जी से तो खैर हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और वो स्टूडियो में भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भैया आपको अच्छा लग रहा है हमारे ऑफिस में?
1: बहुत अच्छा लगा, खासकर वर्क कल्चर का बहुत अच्छा है, और संडे की छुट्टी है आपने अपनी कुर्बान में रूपा करी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा है जब अपने जैसे कलाकार लोग मिलते हैं तो उनके लिए दिल से सलाम निकलता है क्योंकि ये कलाकार कोई कलाकारी पहचान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल सही बात है ना सर जी, बिल्कुल सही।
0: तो बस वही चीज है, और जब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ऑडियंस का प्यार चाहते हैं, और जब प्यार मिलता है तो कलाकार की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। क्यों?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: चलिए तो पहले ये बताइए, आप पहले आप या पहले आप, मतलब पहले भैया आपसे शुरुआत करें। देखिए मनु जी से तो हमने बहुत कुछ सुना है और आज भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो वो सुनाएंगी जब आए हैं, तो अपना चिट्ठा लेकर आते हैं वो पूरा। लेकिन हम सोच रहे हैं आप आए हैं तो हमारे लिसनर्स के लिए कुछ नया और बेहतर हो जाए।
1: बिल्कुल मैं करता हूँ, और क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत तो थोड़ा सा खुशनुमा बनाए।
0: हाँ बिल्कुल, खुशनुमा ही होनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल
1: करते हैं कि मतलब अर्ज करता हूँ कि ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी।
2: वाह।
1: ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी। ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी। और ये शेर और साथ में नसीहत के घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों, घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों। गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी, गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि मनु जी भी कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी बहुत ही उम्दा बात कह दी बातों बातों में। मुझे लगता है कि कुछ कुछ शायरी मनु जी ऐसी होती है जो एकदम सच्चाई से हमें रूबरू कराती
2: है। बिल्कुल सही
0: है ना। और अब मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ बेहतरीन पेश करें।
2: देखिए आज का दिन तो शुभम जी के नाम है,
0: बिल्कुल, लेकिन बीच में आप भी साथ देंगे तो ये महफिल में और चार चांद लग जाएंगे।
2: मेरा मतलब सही, बिल्कुल सही आपने कहा
0: जी, जी।
2: मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले प्रोग्राम में एक नज्म के ऊपर बात हमारी,
0: हाँ हाँ, और वहीं से हमारे जो बातों का सिलसिला था वो खत्म हुआ।
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं आनंद जी ये चाहता हूँ कि एक नज्म अपने दर्शकों के अपने श्रोताओं के
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है।
2: और जाहिर सी बात है श्रृंगार में वियोग और संयोग दोनों ही होते हैं,
0: करेक्ट।
2: और जितने जुड़े हुए दिल खास होते हैं टूटे हुए दिल उससे भी ज्यादा खास होते हैं। तो नज्म मैं हाजिर करता हूँ अपने श्रोताओं की पेशे नजर है। इसका उन्वान है कभी तुमसे वफा की जुस्तजू। देखें किस तरह अपना सफर तय करती है नज्म। कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
0: वाह।
2: कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझमें खुदासा दिखता था। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझमें खुदासा दिखता था। तेरे एहसास की शिद्दत बला थी मैं खुद से भी जुदा सा दिखता था। कभी मरकज वफा की तू ही तू थी, कभी मरकज वफा की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
0: क्या कहने,
2: देखें किस तरह रवानी है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप भी जिसके साथ ये कैफिया बीती हो वो इससे रिलेट करें।
0: बिल्कुल।
2: कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर।
0: क्या कहने,
2: नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस थम जाती थी अक्सर। कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर, नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस रुक जाती थी अक्सर। महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी, महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको।
0: क्या
2: कहा, चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे कर चाहा था तुझको।
0: क्या कहने,
2: मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको। कहा चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे टूट कर चाहा था तुझको। मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी, मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है मगर अफसोस, अब कुछ भी नहीं है मगर अफसोस, अब कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात,
1: क्या कहने, बहुत
0: ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल, क्या बात है सर। आपने जो लास्ट में बोला ना, मजा आ गया इसको सुनकर।
2: शुक्रिया।
0: नब्ज यही जो होती है, जो नज्म होती है सर, उनकी बात ही अलग होती है सर, मतलब वो अंदर तक हमें चीजों से रूबरू करा देती हैं। बहुत ही बेहतरीन। शुभम भैया, आप क्या अर्ज करना चाहेंगे इसी बात पे?
1: पहले तो मैं मनोज जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत शानदार आपकी नज्म रही और जो टूटे हुए दिल की गूंज थी वो यहाँ तक आ रही थी।
2: शुक्रिया, शुक्रिया दोस्त।
0: जब तक शुभम भाई तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमें गाना सुन लेते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आज की जो महफिल है बहुत ही खूबसूरत है, इसमें तीन पत्ती का जो साथ है वो एक साथ मिल रहा है। शुभम जी यहाँ पर है, मनु जी है और मैं भी हूँ। देखिए मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठा हूँ, एज ए ऑडियंस मुझे बहुत मजा आ रहा है, नामचोर आपको भी आ रहा होगा। तो शुभम भैया कुछ सुनाने की तैयारी में थे तो अब जरा चलते हैं सीधा उनके पास। जी सर
1: जी, मैं सुनाने को तो बहुत कुछ था,
0: पहले ये बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं? सॉरी मैं बीच में।
1: बिल्कुल आनंद जी, आपकी महफिल में रह के बिल्कुल आनंद आ रहा है।
0: क्या बात।
1: और मैं जब से मनु जी की अभी नज़्म सुनी है तो मैं उसी में खो गया था और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या पढूं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि जब मनु जी ने इतना अच्छा आगाज कर दिया है कि उसके बाद क्या करेंगे, और जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आप सभी श्रोताओं को मजा आएगा,
0: मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट।
1: तो मैं अर्ज करता हूँ कि आशना हो गया अजाब से भी।
0: वाह,
1: आशना हो गया अजाब से भी।
0: जी जी।
1: दोस्त अनजान था जवाब से भी।
0: क्या बात है।
1: आशना हो गया अजाब से भी, दोस्त अनजान था जवाब से भी। और शेर है कि मेरी कोशिश का वो नतीजा था, मेरी कोशिश का वो नतीजा था, चांद निकला था जो नकाब से भी, चांद निकला था जो नकाब से भी। और शेर है कि जो एक आशिक होता है उसका यही मोटिव रहता है कि उसे हासिल किया जाए। तो शेर उसी के लिए है कि कैसे हासिल उसे किया जाए, कैसे हासिल उसे किया जाए, मांग होती रही ये ख्वाब से भी, मांग होती रही ये ख्वाब से भी। और जब प्रेमी अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है तो उसको श्रृंगार किस तरीके से देता है कि उसकी आवाज में तरन्नुम था।
2: वाह वाह वाह।
1: उसकी आवाज में तरन्नुम था, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी। और शेर देखे कि जब उसका दिल टूट जाता है फिर क्या करता है कि पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ।
2: वाह बात है।
1: पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ, अब बुलाती है जी जनाब से भी, अब बुलाती है जी जनाब से भी। और एक दौर वो आता है जब आशिक बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें उसके लिए कहता है कि जिस दिन मिली थी आंखें ये, उनसे जिस दिन मिली थी आंखें ये, दिन में दिन था वही खराब से भी, दिन में दिन था वो खराब से वही खराब से भी। और शेर है जिंदगी का निजाम है जारी, जिंदगी का निजाम है जारी, है हवा धूप से तो आप से भी, है हवा धूप से तो आप से भी। और शेर है कि जब शादियां होती है उसके लिए शेर है कि शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी। और शेर है के मकता है कि आस्तीनों में सांप देखे हैं।
2: क्या बात है।
1: आस्तीनों में सांप बैठे हैं, अपने अपने शुभम हिसाब से भी, अपने अपने शुभम हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही आनंद आया मुझे। और ये जो अपने नाम के साथ आप चीजों को ऐड कर रहे हैं ना, गजब लाजवाब
2: जी। आनंद जी, इसे तखल्लुस कहा जाता है।

0: क्या कहा जाता है?
1: तखल्लुस कहा जाता है।
0: जो उपनाम, इसका मतलब क्या होता है?
1: ये उपनाम
2: होता है, कायदे में इसको पेन नेम कहा जाता है।
0: ऑलराइट,
2: जैसे धनपत सहाय मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो इन्होंने अपनी गजल
0: में के कलाकार पकड़ के लाए हो आप, मतलब
1: अरे ये
0: कहाँ छुपा के रखा था आपने इतना अल्टीमेट हीरा,
1: बाकी ये गदर कर देंगे।
0: नहीं, नो डाउट।
1: आनंद जी,
0: इनका तलफ्फुज इतना बढ़िया है, इनकी आवाज इतनी लाउड है, तो इनके हिसाब से बड़ी मस्त लग रही है वो जो भी कर रहे हैं शेर शायरी, सब कुछ बेहतर।
2: शुक्रिया, बस आपकी जरा नवाजी।
1: तो आनंद जी, गजल के अरूज में एक बात ये आती है कि जहाँ से गजल शुरू होती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: उस पहले शेर को मतला कहते हैं।
0: वाह।
1: और जिसमें अपना ये उपनाम शामिल, पेन नाम शामिल किया जाता है आखिरी शेर में, उसे मख्ता बोलते हैं गजल की दुनिया में।
0: क्या बात है।
1: तो बस, हालांकि सब जानते हैं लेकिन फिर भी कह देना,
2: अपने श्रोताओं का थोड़े से नॉलेज में इजाफा करना इसको कह सकते हैं हम। और साथ ही साथ अगर मनु जी के साथ में रहने का यही फायदा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी बात में।
1: चार मिसरे रखता हूँ,
2: सुनाइए। अर्ज,
1: किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे। किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे, जो तू चाहे करिश्मे को हकीकत का अमल दे दे, और भला तुझसा करम फरमा सिवा तेरे कहाँ होगा। भला तुझसा करम फरमा सिवा तेरे कहाँ होगा, कि जन्नत की रिहाइश एक नेकी का बदल दे दे, कि जन्नत की रिहाइश एक नेकी का बदल दे दे। और चार मिसरे ये कि खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू।
2: क्या कहने,
1: खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू, हमारी कोशिशों के हौसले का दम शुरू भी तू।
2: क्या कहने।
1: दरअसल शुभम जी, मैं बताता चलूं कि ये जो पहला मिसरा है, ये जनाब साहिल सहरी नैनीतालवी साहब ने हमें दिया था, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कुछ कहो आप, क्योंकि हम उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे, नया नया पदार्पण हुआ था गजलियात की दुनिया में। और ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है, उस्ताद शायरों की फहरिस्त में आते हैं वो, यानी जेल सिंह साहब के साथ में उन्होंने नेशनल लेवल के मुशायरे पढ़े हैं।
0: क्या बात,
2: बहुत अच्छी बात।
1: तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका एक वकार कितना बड़ा रहा। तो उन्होंने जो ये मिसरा दिया था, तो उस पर ये चार मिसरे हुए हैं।
0: जी, और अच्छे हुए हैं।
1: ये जो भी इसमें खास हुआ है वो मैं उनके उस मिसरे को देता हूँ, क्योंकि जब खास चीज होती है तो वो अपना एक खास मुकाम भी रखती है, और निहायत ही एक खूबसूरत चीज निकल कर आती है कि खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू।
0: क्या बात है।
1: हमारी कोशिशों के हौसले का दम शुरू भी तू।
0: वेरी नाइस।
1: तो तेरी मर्जी से होता है यहाँ जर्रा भी सूरज सा, बसा है मुझ में तू ही और मेरे रूबरू भी तू।
2: क्या कहने,
1: और मेरे रूबरू भी तू, खुदा भी, गॉड भी, भगवान भी, वाहे गुरु भी तू।
0: बहुत सुंदर, कसम से सर आपने तो चार चांद लगा दिए ये बात बोल के। मतलब कुछ मैंने पहले भी कहा था श्रोताओं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब शेरो शायरी, नज्म, गजल, जो भी चीजें बनी है वो सब कुछ हमें एकदम ना रियलिटी से कनेक्ट करती हैं। जैसे हम आज के यूथ हैं तो हमें बहुत सी चीजें नहीं पता है, बट अभी जब आपकी ये चीजें सुन रहे हैं तो बड़ी क्लियर क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ ये चीज ये है और ये चीज ये मैसेज दे रही है।
1: आनंद जी, अगर ये बात जो आपने कहा है अगर हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है,
0: बिल्कुल पहुंच रही है,
1: हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। दरअसल क्या है कि आजकल का जो बहुत फास्ट टाइम चल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग तरजीह देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो ये होता है कि गजल जो है उसका अपना मुकाम है।
0: करेक्ट।
1: और ये बात एक महसूस करने की है कि इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूट सकती हो। आप इसमें इमोशंस को देख सकते हैं, आप इसमें रिश्तों को देख सकते हैं, आप इसमें खुशी को देख सकते हैं, आप इसमें गम को देख सकते हैं, आप इसमें इवन के हर चीज को देख सकते हैं, आप इसमें हर रिश्तों को जी सकते हैं। माँ को जिया, मुनव्वर साहब को देखिए, कि वो माँ के नाम से इतने फेमस हुए कि आज तक लोग उन्हें माँ के नाम से जोड़कर, उस शायरी के लिए जोड़कर देखते हैं। तो यही बात है, ये चीज अगर श्रोताओं तक हमारे पहुंच रही है तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। अपने कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो भी हमें यंग लोग सुन रहे हैं, उनको भी ये प्रोग्राम डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। और ये जो छोटी छोटी चीजें आप और मैं और शुभम जी मिलकर कर रहे हैं, यही चीजें जो हमारे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बना रही है। बाकी शुभम और सर के पास वापस लौट कर आएंगे, हम कुछ और नई चार चीजें उनसे सुनेंगे बेहतरीन, और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा नो डाउट। आप बनी रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद जल्दी मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। लौट कर आएंगे तो फिर ये जो महफिल है इसको और अच्छे से

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अखिल, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आज है सैटरडे की शाम, तो पूरे हफ्ते की थकान को दूर करने का वक्त आ गया है। आज के एक घंटे में होगी दिल की बातें, शायरियां और आप लोगों के मैसेजेस, और सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाले सुपरहिट गाने। तो शुरुआत करते हैं बढ़िया सी शायरी के साथ। हंसते रहो तो दुनिया साथ देती है, हंसते रहो तो दुनिया साथ देती है, मुस्कुराते रहो तो जिंदगियां, जिंदगी खुशियां देती हैं। दिल से जियो हर लम्हा दोस्तों, क्योंकि सैटरडे बार बार नहीं आता है। और हाँ, एक प्यारा सा सवाल भी है आप लोगों के लिए। अगर आपको एक दिन के लिए टाइम मशीन मिल जाए, तो आप अपनी लाइफ के किस पल में वापस जाना चाहेंगे? मुझे मैसेज करें और बताएं 9837896896 पे। चलिए सुनते हैं बढ़िया सा सुपरहिट सॉन्ग।

दोस्तों, वीकेंड पर हर घर में एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है। मम्मी कहती है, बेटा आज का क्या प्लान है? तो बेटा कहता है, आराम करूँगा। मम्मी कहती है, बहुत हो गया आराम, बाजार से जाके सब्जी ले आओ। तो वीकेंड पे घर का काम और ये रिश्ता क्या कमाल रहता है कि घर का भी काम हो और भाई साहब वीकेंड हो, तो बस लगता है कि आज तो जो है ना, बस हो गया मेरा पूरा वीकेंड। अभी हमारे पास अंकुर जी का मैसेज आया है, उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि अखिल भाई, अभी अभी आपने जो सवाल किया हमसे कि अगर एक दिन के लिए टाइम मशीन में आपको जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से दिन में जाना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने स्कूल डेज में जाना चाहूँगा, जहाँ पे बस साइकिल पे बैठ के घूमता ही रहूँ, ट्यूशन पढ़ के आऊँ तो घूमता ही रहूँ। मैंने कहा, साहब अंकुर जी, आप तो मतलब घूमने का पूरा ही शौक़ है आपको, साइकिल पे जाके घूमना और मस्ती करना, ये तो स्कूल के दिनों का अलग ही मस्ती है। हमारे पास अभी नीलम जी ने भेजी एक शायरी, खुश रहना भी एक कला है, हर मुसीबत में मुस्कुराना भला है, जो दिल से जीता है जिंदगी को उसके लिए हर दिन सैटरडे वाला है। क्या बात कही है आपने, तो हर दिन ही सैटरडे बता दिया नीलम जी, बहुत बढ़िया। तो सुनते हैं सैटरडे में कुछ बढ़िया से हिट भरे गाने। अगर आपका भी कोई गाना जो आपको बहुत ही लगता है कि यार ये तो हिट है और मेरा बहुत ही पसंदीदा है, तो हमें मैसेज करें या हमें कॉल करें 9837896896 पर। तब तक हम सुनते हैं एक प्यारी सी फरमाइश का गाना, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तो चलिए जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो ये

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

वेलकम बैक है जी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हमारे पास अमन जी का मैसेज आया अभी रामपुर से, लिखते हैं कि उनका पूरा वीकेंड क्रिकेट और दोस्तों के नाम रहता है। वाह अमन जी, सही कहा, वीकेंड हो और दोस्तों का साथ ना हो तो मज़ा ही क्या है। हमारे पास दोस्तों जिंदगी में पैसे ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुकून उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम इतना भागते हैं कि खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं। हमारे पास अभी मीनाक्षी जी ने एक मैसेज करी है शायरी, मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी जीने का नाम है दोस्तों, बस मुस्कुराते रहें यही असली बात है। और हमारे साथ अगले ब्रेक में जुड़ने वाले हैं एक आपके पुराने दिलों के राजा, तो पहचान ही गए होंगे कौन है, तो सुनेंगे इस गाने के बाद कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मुरादाबाद FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और जी हाँ, हमारे पास आ रहे हैं सैटरडे में मैसेजेस। कोई कह रहा है कि आज तो पार्टी करनी है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करनी है। हमारे पास एक मैसेज आया है नेहा जी का, मुरादाबाद से लिखती हैं कि उन्हें पुराने गाने और चाय के साथ एक बारिश हो जाए तो बहुत पसंद है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये नेहा जी, आपने जो लिखा है ना, चाय के साथ बारिश हो जाए, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही अलग है और बहुत ही, कहते हैं ना, थोड़ा सा अजीब सा है, मगर है बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन। अगर हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा, क्या बातें हो जाएंगी, बिल्कुल झकास। तो हमारे पास अभी एक हमारे लिसनर हैं और कहते हैं कि आज सैटरडे नाइट पे देखें क्या बात करते हैं वो हमसे। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है, आज शनिवार की रात है, क्या लाइन पार में रहते हैं आप? तो लाइन पार करके कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कहीं घूमने या आराम करने, छत पे पहुंच गए हैं? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश भी सर बहुत जल्दी होगी, बहुत ही जल्दी, बढ़िया करके।
1: आपका मानसून थोड़ा सा लेट हो गया लग रहा
0: है। हाँ, आज इस बार लगता है मानसून थोड़ा सा लेट हो गया। तो बस बढ़िया साहब, आपसे एक सवाल है, आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर आप एक दिन के लिए गायब हो जाएं, इनविजिबल हो जाएं, मतलब दिखाई ना दे लोगों को, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर आप मिस्टर इंडिया बन जाएं एक दिन के लिए, तो क्या काम करेंगे आप?
1: काम करेंगे?
0: हाँ, पिक्चर जाके देखेंगे, पिक्चर हॉल में जाके बैठ जाएंगे। भाई साहब, तो मिस्टर इंडिया है तो कोई सी भी एक अपनी फेवरेट पिक्चर जाके देख लेंगे पिक्चर हॉल में, या जाके कहीं और। हाँ तो सर, आपको एक दिन में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। देश के लिए कौन सा फायदा है जरा सोच के बताइए हमें, कौन सा ऐसा फायदा करेंगे देश के लिए आप? चलिए, बाकी जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, अगर वो एक दिन के लिए मिस्टर इंडिया बन जाते हैं तो हमें मैसेज करें कि वो क्या बनना चाहें, क्या करना चाहेंगे और क्या देश के लिए क्या काम करना चाहेंगे, जैसे ब्रिजलाल जी करना चाह रहे हैं कुछ। बताइए कोई गाना आपका जो आप सुनना भी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो अच्छी करी। तो आप मिस्टर इंडिया बनके इंडिया के लिए ही कुछ करेंगे? बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा विचार है आपका। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे मिस्टर इंडिया बनने के बाद? नहीं नहीं हम सुनाएंगे आपको नया वाला कोई गाना, बिल्कुल एकदम हिट जो आजकल चल रहा हो। कोई बात नहीं साहब, पुराने विचार जो है ना, थोड़े से नए विचारों के साथ मिलेंगे तो मिलजुल के बहुत अच्छे विचार बनेंगे। वरना चलिए मैं अपनी पसंद का जो सुनाता हूँ वो आप सुनिएगा, वो भी आपको डेडिकेट करेंगे। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छी बात हुई आपके साथ।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद ब्रिजलाल जी। तो साहब हमारे साथ जुड़े थे लाइन पार से ब्रिजलाल जी, और कहते कि मिस्टर इंडिया बन गए ना अगर एक दिन के लिए, तो वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि फ़ख्र हो उन पे भी। तो क्यों नहीं साहब, आप भी बताइए, अगर आप बन जाते हैं एक दिन के लिए मिस्टर इंडिया तो हमें मैसेज करके बताइए कौन सा ऐसा काम है जो चुपचाप करना चाहेंगे, किसी को पता ना चले, या बॉस की जाके पिटाई कर देंगे या जाके कोई पिक्चर हॉल में मूवी देखेंगे। तब तक सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना और हिट गाना आप सभी के लिए।
2: कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताए, आई लव यू।
0: ये गाना अभी रहा है नहीं।

0: बस मैं एक लाइफ में जाना चाहता हूँ। पापा पापा
1: एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।
0: पापा, फिर आप स्कूल से निकल जाते हो, फिर आप स्कूल को मिस करते हो।

वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद एफएम। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। दिल लगाया एक मुस्कुराहट से और आज तक उसके नाम के थे। दोस्तों, हमारे पास मैसेज आया है समीर का बिलारी से। बोलते हैं कि आज आपकी सैटरडे शो में मेरे को अपने दोस्तों की याद आ गई कि सैटरडे वाले दिन हम लोग मस्ती करते थे, रात में एमडीए की तरफ खाने खाने के लिए निकल जाते थे, खूब मस्ती करते थे वहाँ पे। तो बिल्कुल समीर भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप बिलारी से आते थे इधर और मुरादाबाद में एमडीए में अगर आप पार्टी करते थे तो सैटरडे नाइट तो आपने खूब अच्छे से इन्जॉय करी है। और हमारे पास और भी मैसेजेस आए हैं हमारे लिसनर्स के, और कह रहे हैं कि सैटरडे नाइट के लिए हमें जगह ढूंढनी पड़ती है कभी कभी यहाँ पे। तो पूजा जी कह रही हैं कि हमें सैटरडे नाइट के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है। तो सैटरडे नाइट के लिए तो आप पूजा जी कहाँ कोई जगह ढूंढ, खूब कहीं भी निकल जाएं, कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट किसी भी दिशा में, या कहते हैं ना कोई आपका फेवरेट जगह, तो आप पहुँच ही जाइए, वहाँ मस्ती तो हो ही जाएगी आपकी। और चलिए हम सुनते हैं एक बहुत बढ़िया सा मस्ती भरा गाना, एक हिट सॉन्ग, और फिर मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me.
1: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज सैटरडे नाइट में हमारे पास मज़ेदार वाले मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे पास एक मैसेज आया पूजा जी का, वो ये कहती हैं कि मेरा हर सैटरडे जो है ना फैमिली के साथ मूवी देख के गुजरता है। और उधर नेहा जी का फिर से एक बार मैसेज आया हमारे पास। नेहा जी कहती हैं कि कल है योग दिवस संडे में, तो आज मैं इस शो के बाद आपके सो जाऊँगी। हाँ, तो नेहा जी सोना तो

जरूरी है, और कल सुबह जल्दी उठना भी जरूरी है, क्योंकि कल है योगा डे। सुबह सुबह अपनी योगा मैट उठाइएगा, या तो छत पे पहुंच जाइएगा या आसपास पार्क में पहुंच जाइएगा, और खूब सारे व्यायाम करिएगा। और सिर्फ कल ही नहीं करने, रोज करने हैं। पता चला एक ही दिन में बस इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला योगा डे नहीं करना है हमें, तो हमें करना है योगा डे रोज, क्योंकि अगर हम रहेंगे फिट तो हमेशा रहेंगे हिट। हमारे पास अभी एक मैसेज आया है MDA से गार्गी का, और कहती हैं वो कि कल फादर्स डे भी है और मैं अपने पापा को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। हाँ जी गार्गी जी, ज़रूर आपका भी ये फरमाइश पूरी होती है, और आपके लिए भी। फादर्स डे तो स्पेशली रहता है हमेशा, हर कोई अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है, तो अच्छी बात है आपका भी ये गाना डेडिकेट करते हैं। आज हमारे साथ अहमदाबाद से भी एक चारवी कारबरा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और उन्होंने भी यही फरमाइश कही है कि वो भी अपने पापा के लिए एक बढ़िया सा फादर्स डे पे गाना प्ले करवाना चाहती हैं। तो क्यों नहीं चारवी, हैप्पी फादर्स डे आपको भी, और हमारे सभी लिसनर्स को, सभी के लिए ये गाना डेडिकेट है। जो ये लोग कहते हैं ना, पापा जो होते हैं पापा ही होते हैं, पापा के बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तो सुनते हैं फादर्स डे पे एक बढ़िया सा स्पेशल गाना सभी पापाओं के लिए।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है FM 89.6 पर, मुरादाबाद का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, आज पता ही नहीं चला कि हमारा सैटरडे स्पेशल कब अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और आज हमने की मस्ती, हंसी मजाक और दिल की बातें, और चलाए कुछ सुपरहिट गाने भी। और आज मिस्टर इंडिया बनके कैसे लगा देवेंद्र जी को? देवेंद्र जी ने तो कह ही दिया कि भैया, मैं मिस्टर इंडिया बनके सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही। एक हमारे पास अभी शायरी आया है मैसेज के द्वारा, और सुमित जी कहते हैं, हर पल को खुशी से जीना सीखो, हर गम को हंसी में पीना सीखो, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बस हर दिन को सैटरडे समझ कर जीना सीखो। क्या बात कही है सुमित जी, सैटरडे बिल्कुल एकदम होना है, सैटरडे पार्टी होनी चाहिए हर समय। मतलब रोज तो नहीं कह सकता पार्टी हो, मगर हर दिन मस्ती तो होनी ही चाहिए। और इसी के साथ हम करते हैं आज के दिन को अलविदा। सैटरडे आपका भी है, करिए खूब पार्टी, खूब मस्ती, और मिलेंगे जल्दी। कल सुबह सुबह उठ के योगा भी तो करना है, और फिर फादर्स डे भी मनाना है। तो कल है बहुत सारे काम। आपको सबको अखिल का अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर। तब तक मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
1: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।